ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि। तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसो परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास तालरिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तीसरी मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का

0: करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए सामान्य नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फो कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुए दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडंबू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडंबू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हरा कर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा मुस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गो हानू और मूसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना मालिनोविच और गेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है विश्व शांति। वाचक स्वर है श्री विश्वनाथ मिश्र का।
2: आजकल कहा जा रहा है कि विश्व विनाश के किनारे खड़ा है। विनाश की विभीषिका ने मानव को आतंकित कर रखा है, इसलिए विश्व शांति के प्रयत्न बराबर चल रहे हैं। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, विभिन्न राजधानियों की दौड़ लगाई जा रही है, निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, विभिन्न स्थलों को शांति का क्षेत्र घोषित करने का भी प्रयास चल रहा है। परंतु जितने प्रयास किए जा रहे हैं, विश्व शांति उतनी ही दूर होती जा रही है। कैसी है यह विडंबना। आज अपने को सभ्य एवं विकसित करने वाला मानव, प्राचीनता को पानी पी पी कर कोसने वाला मानव आज संतृप्त है। वह दौड़ रहा है मेरी मरीचिका में प्यास बुझाने के लिए। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृता का दिन हाँकने वाले आज एक दूसरे के खून के पिपासु हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर भी कभी विचार किया गया? इसमें संदेह नहीं कि इन सब आपत्तियों की जड़ या निदान मानव की जड़वादी प्रवृत्ति है। जहाँ ईश्वर में विश्वास नहीं, धर्म और परलोक का भाव नहीं, शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं, वहाँ सिवा अशांति उपद्रव एवं विभीषिका के और क्या उपलब्धि हो सकती है। जड़वाद की शुष्क मरी मरीचिका में शांति शरीर की विमल सुस्निग्ध वायु धारा कभी प्रवाहित हो सकती है क्या? कभी ऐसा भी समय था जबकि न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न

0: बड़ा था न कोई बंध था, किंतु धर्म के आधार पर ही सारे प्राणी परस्पर प्रेम से रहते थे। पारस्परिक वैर का तो नामो निशान भी नहीं था। समता नामक वस्तु तो भूमि से भी नहीं मिलती थी। गोस्वामी जी ने कहा है, वैर नकार का ही संकोई राम प्रताप विषमता खोई। बिना धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावना की स्थापना किए मानव में प्रेम स्नेह का उद्रेक कभी हो ही नहीं सकता। यह दिखाई पड़ने वाला स्थूल शरीर तो समानता का आधार कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई स्थूल तो कोई पतला, कोई बुद्धिमान तो कोई निर्बुद्धि या मंदमती, कोई सुंदर तो कोई कुरूप। ऐसी स्थिति में शारीरिक आधार पर तो समानता की बात करना व्यर्थ ही है। समानता का आधार तो सदैवातिरिक्त आत्मा ही हो सकता है, जो प्राणी मात्र में अनुसूचित है। वह जैसे शूकर कुकर कीट पतंग में है, वैसे ही धनी निर्धन निर्बुद्धि बुद्धिमान सुंदर कुरूप सभी में व्याप्त है। अतः प्राणी मात्र की सेवा उसी आत्मा की सेवा है। इस बुद्धि से व्यवहार करने से ही मानव की दानी वृत्ति का समय हो सकता है। अन्यथा मूल को छोड़कर शाखाओं के सिंचन से केवल दुराशा मात्र ही हाथ आएगी। भगवान ने कहा है, समय हम सब भूतेषु सारे प्राणियों में ही व्याप्त हूँ। अध्यात्मवाद की यह संजीवनी ही आज के विभीषिका वस्त जलते हुए विश्व के लिए एकमात्र सहारा हो सकती है। जहाँ पर पीड़न को पाप परोपकार को पुण्य बताया गया है, हम एक ही परमात्मा की संतति है, अतः हम सब एक है। यह भावना ही भ्रातृता की जननी हो सकती है। मार्क्स के द्वारा प्रसारित जड़वाद की नाभी जिसने आज विश्व को आंदोलित कर रखा है, अपने दुखद परिणामों के कारण आज स्वयं उपेक्षणीय होती जा रही है। जड़वादी महल आज धराशायी होने के लिए उन्मुख दिखता है। यह विश्व के लिए शुभ लक्षण है, क्योंकि बिना अध्यात्म भावना के उद्दान भौतिकवाद कभी भी मानव का कल्याण नहीं कर सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था विश्व शांति। वाचक स्वर था विश्वनाथ मिश्र का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के क्षमा कीजिए प्रातः के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

हरिओम शरण और नंदिनी शरण के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 232 से 235 तक का सहस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया, स्वर अनुराधा पोडवाल का है।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसा

का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुन रहे थे बालकांड दोहा संख्या 232 से 235 तक का सस्वर पाठ। संगीतकार थे सतीश भाटिया और स्वर अनुराधा पोडवाल का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, मन के जीते जीत है मन के हारे हार, मानसून के दौरान आंखों में इन्फेक्शन, सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चों को सिखाए गुड और बैड टच। साथ ही साथ वार्ता होगी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और साथ ही साथ होगा कुछ गीत संगीत और रसोई से आपके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा युवाणी। इसमें आज की बात होगी कैच द रेन, लघु जानकारी होगी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, औषधीय पौधे लगाएं, डेविस कप और साथ ही साथ रोजगार समाचार और क्विज टाइम।

संध्या 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री, बीज का टीकाकरण, बीजोपचार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा दे अनुदान योजनाएं, पशुओं का वर्षा जनित बीमारियों से बचाव, मौसम की जानकारी के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, न्यू इंडिया का सपना और विकसित भारत 2047 का संकल्प, बचत और निवेश।

7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर कार्यक्रम होगा सौरभ। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मानव जीवन पर विकिरण का प्रभाव। वार्ता में वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल अरोड़ा।

आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 9:10 पर कार्यक्रम होगा लोक संगीत। 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मुकुल।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे खेती की बातें। विषय है कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण व मानकीकरण। वाचक स्वर है डॉक्टर भरत कुमार जाचड़ा का।
1: राम राम। आज बात करा कृषि उत्पादों रो श्रेणीकरण और मानकीकरण काई हुए इर बारे में। कृषि उपज रो मानकीकरण और ग्रेडिंग जो है उपभोक्ता वास्ते एक बाजार चैनल बनाए करे और इर मैंने उत्पाद री कीमत रो आकलन करनो और सागे सागे गुणवत्ता रे अनुरूप ग्रेडिंग और मानकीकरण एक प्रक्रिया है। किसान स्तर पर भी अग्रेडिंग हो सके है पर मानकीकरण जो है वो सिर्फ सरकार रे स्तर पर होया करे। वैज्ञानिक ग्रेडिंग जो को है गुणवत्ता मूल्यांकन रे माथे आधारित हुए। विक्रेता ई वस्तुवारी गुणवत्ता रो वर्णन करने वास्ते या खरीदार ने बताने वास्ते ए ग्रेडिंग में जका शब्द है इन्हें काम में लिया करे और इस सब में देखता वही कृषि उपज रो अधिनियम ग्रेडिंग और अंकन अधिनियम 1937 जो को है वो आपरे भारत सरकार बनायो। इन मैंने कृषि जिन्स रो विपणन जो को है वैज्ञानिक तर्ज रे माथे करनो निश्चित करी जो कृषि जिन्स और पशु उत्पादक रे ग्रेड तय करे जी ताकि खरीदार ने पतो चाल जावे कि वो जो को पदार्थ या जकी कृषि उत्पाद में खरीद रही है वो किसी ग्रेड रे अंतर्गत आया करे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है भारत सरकार रे अंतर्गत विपणन और निरीक्षण निदेशालय बनायो है और वो निदेशालय जो है 213 कृषि जींस वास्ते ग्रेड मानक तैयार करे है और वर्गीकृत जकी कृषि उपज है इरमत है एगमार्क लेबल लगा है। एगमार्क लेबल लगड़ो है इर मतलब भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। मैं एक उदाहरण दूं सा कि गेहूं कई तरह रहवे करे है 1482 भी आवे फार्मी भी आवे और कोई दूसरा गेहूं भी आया करे तो एक आम व्यक्ति ने किया ध्यान पड़े कि वो गेहूं जो है किसी गुणवत्ता है तो इसी स्थिति में मैंने अगर भी मतलब ग्रेडिंग लागूड़ी हुए और सरकार की कोई एजेंसी है जिकेरे निगरानी में लागूड़ी हुए तो इसी स्थिति में मैंने खरीदार ने आसानी में पता चल जाए कि वो फार्मी गेहूं है।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम दुर्घटनायां

0: पञ्चदश भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 7 बजे है आरंभ होता है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मशहूर शायर दुष्यंत कुमार जी की दो पंक्तियां हैं, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं, ये प्रतीक है उस जज्बे का जिसे हम उम्मीद कहते हैं, जिसे हम आशा कहते हैं। श्रोताओं, आज है 12 जुलाई, आज है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमारे जीवन को रोशन कर सकती है और वो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन ला सकती है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सोचते रहें और अपने जीवन की उस छोटी सी किरण को कभी बुझने ना दें, जैसे ये गीत हमें सिखाता है।

श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की। इसे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मार्च 2025 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया था। इसका उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता, संघर्ष और मानसिक तनाव के दौरान आशा की को एक कुशल और सकारात्मक शक्ति के रूप में बढ़ावा देना, क्योंकि हम जब कई बार हताश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक आशा की किरण अपने आप हमारे जीवन में नजर आ ही जाती है और उसे लेकर ही हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जीवन है जिसमें धूप और छांव दोनों आती रहती है, यानी सुख और दुख दोनों आते हैं। लेकिन यदि हम निराश हो जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब भी हम कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें और उसी आगे बढ़ते रहने में हमें कोई ना कोई उम्मीद की किरण वापस मिल ही जाती है और हमारे जीवन में एक नया उजियारा आ जाता है। श्रोताओं, इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर के लोगों को जो मनोबल है उसको बढ़ाना, चाहे किसी भी परिस्थिति में अगर आप हो तो उसके लिए आपका जो मनोबल है जो अचानक से गिर जाता है उसको बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, हमें जागरूक करने के लिए कि हमें कभी भी किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन का सफर है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है और उसे बेहतर बनाने के लिए हमें अपने जीवन में उस छोटी सी उम्मीद की किरण को खुद ही खोजना पड़ता है, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके, सफल बन सके, जिसके लिए हम खुद प्रयासरत रह सकते हैं और प्रयास करते भी हैं। लेकिन ये जो जीवन है, इसकी ये जो धूप छांव है, हमें कई बार निराश भी कर सकती है, जैसे हम इस गीत में आपको सुनवा रहे हैं।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं बचत की। वो पैसा जो हम बचाते हैं और उसे हम किस तरह से रखें और वो हमारे किस तरह से काम आ सके, उसे हम अपनी बचत के रूप में कैसे रख सकते हैं। बचत या निवेश, ये दोनों ही पैसों को सुरक्षित रखने के तरीके हैं, लेकिन इनका उद्देश्य थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे हम हमारी बचत जो करते हैं, हमारी जो सैलरी आती है उसमें से जो हम पैसा बचत में रखते हैं, वो हमारी आने वाली जो भी परेशानी हो या अचानक से आया हुआ कोई खर्चा हो उसके लिए हम सहेज कर रखते हैं। जैसे हमें फीस भरनी हो बच्चों की या घर में कोई नई चीज़ लानी हो, उसके लिए हमें बचत करनी आवश्यक हो जाती है। लेकिन जो हम निवेश करते हैं वो आने वाले समय के लिए निवेश होता है। वो थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि यदि हम निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उस किए हुए निवेश का हमें पैसा ज़्यादा भी मिल जाए और कम भी मिल जाए। ये हमारे रिस्क पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमें अपने सोच से, समझ से और विवेक से ये फैसले लेने चाहिए। बचत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो लोन या किसी की मदद हमें ना लेनी पड़े। हमारी जो कमाई है

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है अमृत। स्वर मनहर और अनुराधा पोडवाल के हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए मिस्टर नटवर लाल फिल्म से ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

मोहब्बत, कुछ लोग इसे एक मीठा सा दर्द कहते हैं, कुछ लोग इसे इबादत कहते हैं, तो कुछ लोग इसे एक खूबसूरत सा साफ सुथरा सा नशा कहते हैं। पर इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब दिया है महान गीतकार संतोष आनंद ने, और इसे अपनी आवाज से अमर कर दिया है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने, और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से ये गीत। आइए अब सुनते हैं आराधना फिल्म से ये गीत। स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

लम्हे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आता है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का

0: भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री कल गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: तक 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
7: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की

0: crore rupees, marking a 30.59% growth over financial year 2025. In its editorial title, Wayanad Landslide, mountains keep warning us, but are we listening? The Times of India writes that barely 2 years after Wayanad witnessed one of India's worst landslide disasters, another mountain side has collapsed. The immediate cause of the landslide will eventually be established. But mountains are not simply obstacles waiting to be drilled through. They are living landscapes with limits that engineering alone cannot negotiate. And finally, historic Gurudwara in Lahore, associated with Sri Guru Har Gobind Sahib Ji, built in 1923, has been reopened for the first time since partition, ending a wait of nearly 79 years, reports the Sunday Tribune. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता विकिरण का मानव जीवन पर प्रभाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा।
3: तरंगों या कणों के रूप में उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर गतिशील रहते हैं। विकिरण दो प्रकार के होते हैं, आयनकारी तथा अनायनकारी। आयनकारी विकिरण उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं, इनमें आयनीकरण की क्षमता पाई जाती है। यह इलेक्ट्रॉन मुक्त करने योग्य ऊर्जा युक्त होते हैं। आयनीकरण विकिरण प्राकृतिक अथवा कृत्रिम नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मुक्त रेडिकल बनते हैं जो रासायनिक क्रिया की दृष्टि से क्रियाशील होते हैं। इनका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हो सकता है, परंतु ये लाभकारी भी होते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी आदि। सामान्यतः जब हम विकिरण की बात करते हैं तो हमारा मतलब आयनकारी विकिरण से ही होता है। आयनीकरण विकिरण के अनेक प्रकार हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे आदि। अनआयनीकरण विकिरण में किसी एक अणु के परमाणु को गतिशील करने अथवा उसमें कंपन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये रासायनिक संरचना में परिवर्तन करने योग्य नहीं होते। दृश्य प्रकाश तथा माइक्रोवेव इसके उदाहरण हैं। विकिरण सारे विश्व, सौरमंडल और पृथ्वी पर पारगमन करती है। यदि वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए नहीं हो तो सूर्य से आने वाले विकिरण से जीवन खतरे में पड़ जाए। वायुमंडल घातक सौर विकिरण को आवरित कर देता है। कुछ विकिरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। कुछ विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वे जीव मंडल को प्रभावित करते हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें त्वचा का कैंसर कर सकती हैं। सभी प्राकृतिक विकिरण जिसमें हम अनावरित होते हैं पृष्ठभूमिक विकिरण कहलाते हैं। इसके अलावा मनुष्य ने कई रूपों में विकिरण उत्पादित की है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक आयनीकारी विकिरण देते हैं, इन्हें राइडो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यह पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं जिनकी अर्ध आयु इनकी सक्रियता को दर्शाती है। रेडियो एक्टिवता की मात्रकें क्यूरी, रुंटगेन, रेड, रैम हैं, जिन्हें अब क्रमश कुलाम प्रति किलोग्राम, ग्रे प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम कहा जाता है। रैम जीवों पर होने वाले प्रभाव की सूचना देता है। पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश आदि विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं, जबकि बीटा कण, अल्फा कण, प्रोटॉन कण, उग्र न्यूट्रॉन, कॉस्मिक किरणें कणिकीय विकिरण कहलाते हैं। कॉस्मिक किरणें

0: सूर्य तथा अंतरिक्ष के तीव्र कण हैं जो धरती पर उच्च वेग से गिरते हैं। ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड और पोटेशियम तथा कार्बन के समस्थानिक मृदा, चट्टानों, जल तथा वायु में अति सामान्य है। मनुष्य स्थलीय विकिरणों से लगभग 50 मीटर रेड प्रति वर्ष ग्रहण करता है। रेडियो एक्टिव गैसें थोरान तथा रेडॉन वायु में 2 मीटर रेड प्रति वर्ष के निम्न मान के साथ उपस्थित होती है। थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम तथा कार्बन के समस्थानिक मनुष्य के शरीर में अल्प मात्रा में रहते हैं। एक्सकिरण मशीनें, विकिरण चिकित्सा, नाभिकीय रिएक्टर, अपशिष्ट रेडियो एक्टिव अनुसंधान, घड़ियों में रेडियम डायल आदि मानव निर्मित विकिरण स्रोत होते हैं। नाभिकीय शक्ति विद्युत उत्पादन का एक नया तरीका है जिसे नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संयंत्रों के रेडियो एक्टिव अपशिष्ट गैस ठोस या द्रव रूप में हो सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा मनुष्य तक पहुंचते हैं। इनमें स्ट्रोशियम 90, सीजियम 137 और आयोडीन 131 अति हानिकारक हैं। स्ट्रोशियम 90 अस्थियों तथा उत्कों में कैल्शियम के स्थान पर निक्षेपित हो जाता है। सीजियम 137 पोटेशियम की जगह ग्रहण कर लेता है और आयोडीन 131 पादपों को संदूषित करता है। यह बाद में दूध, डेयरी उत्पादों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर थायराइड ग्रंथि को क्षतिग्रस्त कर देता है। ये पदार्थ जल पक्षियों तथा उनके अंडों को भी प्रभावित करते हैं। नाभिकीय संयंत्रों के रेडियो एक्टिव रिसाव का सबसे बड़ा उदाहरण 1986 की चेर्नोबिल दुर्घटना है जिसका प्रभाव अभी तक देखा जा सकता है। विश्व के विभिन्न भागों में नाभिकीय हथियार परीक्षण के लिए नाभिकीय विस्फोट किए जा रहे हैं जिसमें 17% रेडियो एक्टिवता होती है। परमाणु विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव धूल धरती पर गिरती है जिसे रेडियो एक्टिव अवपात कहते हैं। इसमें स्ट्रोशियम, सीजियम, आयोडीन, कार्बन आदि प्रमुख होते हैं जिनकी अर्ध आयु हजारों वर्ष होती है। यह पादपों, दुग्ध, डेयरी, मांस, आहार के उपभोग से मनुष्यों में पहुंचकर मज्जा तथा रुधिर कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम लगभग 7 दशक बाद भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। विकिरण अत्यधिक विषाक्त प्रभाव दर्शाते हैं। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण रेडियो एक्टिवता के क्षेत्र में 1903 का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी की मौत है जो रेडियो एक्टिवता विषाक्तता के कारण ल्यूकेमिया हो जाने से हुई थी। मानव में विकिरण का प्रभाव कायिक और अनुवांशिक हो सकता है। उच्च विकिरण अनावरण से मृत्यु भी संभव है। शरीर पर 400 से 700 रुंटगन की मात्रा घातक होती है। इससे एनीमिया, संक्रमण तथा रक्तस्राव जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आंत, लसिका ग्रंथि, प्लीहा, अस्थि मज्जा सबसे अधिक प्रभावित होने वाले अंग होते हैं। विकिरण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विनाश कर देते हैं। इसके विलंबित प्रभावों में मोतियाबिंद, ल्यूकेमिया, कैंसर, ट्यूमर, हृदय विकार, समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है। गर्भवती स्त्री का एक्सरे करने से शिशु को कैंसर का खतरा हो सकता है। विकिरण प्रभाव के कारण उत्परिवर्तन की दर उच्च हो जाती है। चिकित्सा अनुसंधान उद्योगों, औषधि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग विकिरण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पादपों पर भी इनके अनुवंशिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। मोबाइल फोन विकिरण का मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव एक नया अध्ययन क्षेत्र है। अनेक वैज्ञानिक शोधों में मोबाइल फोन विकिरण से होने वाले प्रभावों पर अध्ययन किए गए हैं। मोबाइल फोन, वाईफाई, कोर्डलेस फोन मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। मई 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेल फोन विकिरण को कैंसरकारी श्रेणी ग्रुप 2B IARC में रखा था। यह विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो तरंगें मस्तिष्क द्वारा अवशोषित की जाती हैं। एक मोबाइल सेट 2 से 4 वाट तक रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। इस समय लगभग 50 करोड़ मोबाइल फोन तथा 50 लाख मोबाइल टावर सक्रिय हैं। मोबाइल फोन विकिरण का मानव शरीर द्वारा अवशोषण को विशिष्ट अवशोषण दर SAR द्वारा मापा जाता है जिसकी आवृत्ति सीमा 800 से 1800 मेगाहर्ट्ज पर आधारित है। इसकी दर घर के अंदर बाहर बदलती रहती है। इस दर के मानक निर्धारित किए हुए हैं। USA में यह दर 1.6 वाट प्रति किलोग्राम, तथा यूरोप में 2 वाट प्रति किलोग्राम है। यह दर प्रतिदिन 6 मिनट मोबाइल उपभोग पर आधारित है। सामान्यतः 3 से 4 वाट प्रति किलोग्राम तक इसे सुरक्षित माना जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति प्रतिदिन 18 से 24 मिनट तक सुरक्षित बात कर सकता है। मोबाइल टावर तो 2000 मेगाहर्ट्ज से भी उच्च आवृत्ति दर्शाते हैं और यह 24 घंटे अच्छे सिग्नल देने के लिए एक दूसरे के निकट स्थापित किए जाते हैं। मोबाइल टावरों के 10 मीटर तक के क्षेत्र में रहने वाले लोग सामान्य लोगों से 10,000 से 1 करोड़ गुना अधिक सिग्नल प्राप्त करते हैं। यह उच्च विकिरण क्षेत्र होते हैं। भारत में विकिरण नियम ICNIRP 1998 के निर्देशों के आधार पर माने जाते थे। भारत में विशिष्ट अवशोषण दर 4.7 से 9.2 मीटर वर्ग तक सामान्य है, जो कि बहुत उच्च है। मोबाइल विकिरण के तापीय तथा अतापीय प्रभाव होते हैं। तापीय प्रभाव माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने के समान है। इससे सिर का तापमान बढ़ता है, जिससे आंखों में रेटिना प्रभावित होकर मोतिया होने की संभावना बढ़ जाती है। अतापीय प्रभावों में सिरदर्द, बहरापन, थकान, सुस्ती, मस्तिष्क का सुन्न होना, याददाश्त कम होना, हड्डियों का कमजोर होना, लाल ग्रंथि का ट्यूमर बनना, कैंसर, तनाव, नींद आना, पुरुषों में जनन क्षमता का कम होना, शुक्राणु में DNA का प्रभावित होना आदि शामिल है। दीर्घकालीन प्रभावों में अल्जाइमर तथा पार्किंसन जैसे रोग संभव हैं। भारत में लोग रोजाना मोबाइल फोन पर 1 से 2 घंटे तक बात करते हैं, जिसके दुष्प्रभाव भयानक हो सकते हैं। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों पर मोबाइल विकिरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। मोबाइल को सारा दिन जेब में रखना तथा रात को तकिए के पास रखकर सोना हानिकारक हो सकता है। भारत में 1 सितंबर 2012 से मोबाइल विकिरण के लिए नए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। मोबाइल कंपनियों को विकिरण के मौजूदा स्तर को 10वें हिस्से तक घटाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त मोबाइल टावरों के बीच की दूरी भी निर्धारित निर्देशों के अनुरूप करनी होगी। स्कूलों तथा अस्पतालों के परिसरों से टावर हटाने होंगे। विकिरण का सही उपयोग तथा इससे बचाव ही मानव जीवन की रक्षा कर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, मानव जीवन पर विकिरण का प्रभाव। वार्ताकार थे डॉक्टर अनिल अरोड़ा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत।

0: ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेंगलुरु से आई पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन। 18 जुलाई तक दो पारियों में ली जाएगी ये परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा। अधिकांश हिस्सों से बादल छटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी। और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से यात्रियों के लिए शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट के बेंगलुरु से जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत किया। ये फ्लाइट फिर से यात्रियों को लेकर जोधपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से 37 एकड़ में बना ये 24,000 वर्ग मीटर का भव्य भवन पुराने टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। एयरपोर्ट के इस टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश द्वार और 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। पहली बार सीधे विमान में जाने के लिए एरोब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट बनाई गई हैं। अक्टूबर में नए पर्यटन सत्र में कई नए शहरों के लिए यहां से उड़ान संचालित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है।

0: अभी आपने सुना सीमा मिश्रा के स्वर में ये लोकगीत, आइए अब सुनते हैं शकुंतला जोशी के स्वर में ये लोकगीत।
1: हमारी सवाल

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। अब सुनेंगे कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश कर रही हैं श्रीमती अनीता जोशी।

जय हिंद मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी दीदी अनीता, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आपका अपना चहेता कार्यक्रम मुकुल। मुकुल के मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, हो जाओ आप तैयार और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस कविता से। हमारे कविता का शीर्षक है आज का सच्चा साथी। हाँ बच्चों, जो मुश्किल में साथ निभाए वही तो सच्चा साथी कहलाए। धूप मिले या परछाई, जिसने कभी न छोड़ी हमारी कलाई। हंसते हंसते जो रोना भुला दे, हंसते हंसते जो रोना भुला दे, रूठे हो तो हमें हंसा दे। अपनी टॉफी आधी कर दे, छोटा सा दिल खुशियों से भरते। गलती पर जो डांट लगाए, गलती पर जो डांट लगाए, सही राह पर चलना सिखाए। भीड़ में भी जो पास खड़ा हो, भीड़ में भी जो पास खड़ा हो, सामने चाहे संकट बड़ा हो। जीत में जो ताली बजाए, जीत में जो ताली बजाए, हारे तो वो गले लगाए। जिसके दिल में छल कपट ना आए, वही तो है सच्चा साथी हमारा। किताबें भी हैं सच्चे साथी हमारी, ज्ञान की देती है दुनिया प्यारी। पेड़ भी है जो छाया देते, बदले में कुछ कभी न लेते। पेड़ भी जो है छाया देते, बदले में कभी कुछ कभी न लेते। तो आओ ढूंढे ऐसा मीत, जो गाए बस प्यार के गीत। हाथ बढ़ाकर जो साथ निभाए, वही तो है जो हमारा सच्चा साथी कहलाए।

तो सुना बच्चों आपने अभी अपना एक बाल गीत। बच्चों जब भी हम अपना एक ये प्रोग्राम शुरू करते हैं मुकुल, तो हम हमेशा एक महान शख्सियत के बारे में बात करते हैं और वो हमारे लिए क्या संदेश देके गए, हम उसके लिए भी एक चर्चा करते हैं। तो हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और वो बच्चों के लिए क्या कह के गए। तो बच्चों आज के हमारे इस मुकुल प्रोग्राम में हमारे एक महान संत, विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। बच्चों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र दत्त था। वे बहुत ही जिज्ञासु, साहसी और बुद्धिमान बालक थे। उन्हें नई बातों को सीखना, प्रश्न पूछना और सत्य की खोज करना बहुत ही पसंद था। स्वामी विवेकानंद जी बच्चों से ये कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे सभी बच्चों को ये संदेश देते थे कि जीवन में मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। वे कहते थे कि हर बच्चे में अपार शक्ति छिपी होती है। यदि बच्चा अपने ऊपर विश्वास करे तो वो बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकता है। यही नहीं बच्चों, सोचिए कि यदि हम पढ़ाई समय पर करेंगे, खेल कूद में भाग लेंगे, अपने माता पिता शिक्षकों का सम्मान करेंगे और अच्छे मित्र चुने तो

हमारा जीवन कितना सुंदर बन सकता है। वो कहते थे, अच्छे मित्र और अच्छी किताबें हमेशा चुनकर रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही चाहते थे कि बच्चे केवल किताबों से ही नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से भी कुछ सीख सकते हैं। वे कहते थे कि हमें डरना नहीं चाहिए। जब हम किसी प्रतियोगिता, परीक्षा या नए काम से घबराते हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। साहस के साथ किया गया प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। स्वामी जी ने ये भी बताया कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों जरूरी है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना, व्यायाम करना और पौष्टिक भोजन खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी की ओर से बच्चों के लिए जो संदेश थे, स्वामी जी सभी बच्चों को ये कहते थे, अपने ऊपर विश्वास रखो, समय का सदुपयोग करो, सच बोलो और ईमानदार बनो, कड़ी मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो, देश और समाज के लिए अच्छे कार्य करो। और स्वामी जी की जो कुछ खास पंक्तियाँ थी वो ये थी, तुम अनंत शक्ति के स्वामी हो, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी केवल एक महान संत ही नहीं थे बल्कि बच्चों और युवाओं के सच्चे मार्गदर्शक भी थे। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो बच्चों, आया आपको समझ में कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और कभी भी कोई भी काम करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ हमें हर काम करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

तो बच्चों अब हम बात करते हैं आज की कहानी की। आप आज रविवार है तो जरूर आज आप बाग में घूमने गए होंगे, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे होंगे, तितलियाँ देखी होंगी और मन भी बहुत खुश हुआ होगा। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तिरंगी लाल ने तितली पकड़ी। एक बाग था बहुत ही सुंदर। तिरंगी लाल शहर में नए नए आए थे। पिछले 2 दिनों से रोज उस बाग के पास से गुजरते तो सुंदर बाग को देखते और उनका मन होता कि वे बाग में टहलने जाएं, कुछ समय वहां बैठकर बाग की ताजी हवा का आनंद लें। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। एक दिन समय मिला तो पहुंच गए बाग में, और बाग में को जो बाहर से तो वो इतना सुंदर दिखता था, अंदर से और भी खूबसूरत था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, एक फव्वारा भी था। सुंदर बाग देखकर तिरंगी लाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो पेड़ की छांव में बेंच देखकर वहां बैठ गए। वहां जहां बैठे थे वहां आसपास पेड़ पौधे थे। पौधों पर खिले खिले फूल उनके मन को बहुत ही प्रफुल्लित कर रहे थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। तितलियों को देखकर तिरंगी लाल को अपना बचपन याद आ गया। जब वो अपने साथियों के साथ प्राय तितलियां पकड़ने जाते थे तब तिरंगी लाल मन में सोचता कि काश वो बचपन के वो दिन फिर लौट आए। फिर जब सामने एक फूल पर तितली बैठी तो चुपके चुपके उसके पास आकर तिरंगी लाल जी तितली को पकड़ने लगे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया पर वो क्या पर क्या था, तितली तो फुर्र हो गई। अब तितली को पकड़ने का काम आसान नहीं था। फिर भी तिरंगी लाल ने हिम्मत करके उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। अब आगे तितली और पीछे पीछे तिरंगी लाल जी। फिर भागते भागते आखिरकार उन्होंने तितली को पकड़ ही लिया। अब तितली उनके हाथ में थी। तिरंगी लाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही खुश थे। तितली को अपनी उंगलियों के बीच पकड़े वे बेंच पर आकर बैठ गए। वही पास में सूरज नाम का लड़का बाग में खेल रहा था। अचानक तिरंगी लाल के हाथ में तितली देखकर उनके पास आया और बोला, अंकल आपके हाथ में तितली? तिरंगी लाल ने कहा, हाँ हाँ बहुत ही सुंदर लगती है, है ना? सूरज ने कहा, सुंदर तो है पर आप इसे कहाँ से ले आए? तिरंगी लाल ने, हाँ

क्या मैं तितली नहीं पकड़ सकता? सूरज, तितली पकड़ना इतना आसान नहीं है अंकल, इसे पकड़ने के लिए आपको बहुत दौड़ना पड़ा होगा। तिरंगी लाल ने कुछ कहना चाह रहा था कि इतना दौड़ा हूँ कि बात ही मत पूछो, और वो ठोकर भी खानी पड़ी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले सूरज से। उसने कहा, अंकल हमारी, सूरज ने कहा कि अंकल हमारी मैडम कहती है कि किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है। तितली पकड़ने से तो वे हमेशा मना ही करती है। सूरज की ये बात तिरंगी लाल को बहुत बुरी लगी और उनका चेहरा लाल होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगे कि इतना सा छोकरा होकर मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है और मुझे इतनी बड़ी सलाह दे रहा है। लेकिन गुस्से को दबाकर उन्होंने सूरज को कुछ भी नहीं कहा। सूरज ने कहा उसे सताना भी नहीं चाहिए, प्यार कर रहा है, तितलियों को फूलों पर मंडराते हुए देखने में ही अच्छा लगता है, वो उन्हें पकड़ना भी नहीं चाहिए। सूरज की ये बात सुनकर तिरंगी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई, पर वे कुछ नहीं बोल पाए। सूरज ने कहा, अंकल अब ये तितली उड़ नहीं सकती, इसे हाथ से छूने से इसके पंखों के जो सुंदर रंग है ना, वो उतर गए होंगे। आप अपनी उंगलियां देखिए, तितलियों के रंग उतर जाने से वे फिर से नहीं उड़ सकती। ये लड़का सही कह रहा है क्या या गलत, ये देखने के लिए तिरंगी लाल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तितली को बेंच पर रखा। उनके पंखों के सब रंग सचमुच में गायब हो चुके थे, और तिरंगी लाल की उंगलियों पर तितली के पंखों के जो रंग थे वो अंगुलियों पर लग गए थे। तिरंगी लाल को अब महसूस होने लगा कि तितली को पकड़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, और उन्होंने, बेटे में छोटा था तब मैंने कभी इस बात के बारे में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सूरज को बोला कि बेटा जब मैं छोटा था तब मैंने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था कि तितलियों के पंखों को छूने से उनकी उड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। तू तो बहुत समझदार है बेटा, तू छोटा होते हुए भी जो बात जानता है वो मैं बड़ा होकर भी नहीं जानता। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी भी अब तितली नहीं पकड़ूंगा। ये कहते कहते तिरंगी लाल की आंखों में आंसू आने लग गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें कभी भी जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, और ज्ञान चाहे छोटे से मिले चाहे बड़े से, हमें हमेशा सीख लेना चाहिए। तो आया, इस कहानी को आपने सुना और क्या सीखा, और इस बात को आप अपने जीवन में भी जरूर जरूर उतारना। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

बच्चों अब बारी आई है आज की हमारी रोचक जानकारी की। एक ऐसा जानवर है जो बहुत तेज दौड़ता है और झुंड में भी रहता है। सोचो किसके लिए बोल रही हूँ। हाँ मैं बोल रही हूँ, आज की हमारी रोचक जानकारी है खरगोश, जो आंखें खोलकर भी सो सकते हैं। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो आंखें खुली रखकर भी सो सकते हैं। ऐसा करके वे शिकारियों से अपनी रक्षा कर लेते हैं। इनकी आंखें ऐसी जगह पर स्थित होती है कि उन्हें लगभग 360 डिग्री तक का व्यू दिखाई देता है। इनके दांत जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं। घास लकड़ी चबाने से इनके दांत घिसते हैं और उनका संतुलन बना रहता है। खरगोश के कान इनके शरीर का तापमान नियंत्रित भी करते हैं। ये कानों को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। नर खरगोश को बक, मादा को डो और नवजात खरगोश को किट या किटन कहते हैं। खरगोश एक सामाजिक जानवर होता है जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों ये तो थी आज की हमारी रोचक जानकारी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
7: आरबीआई कहता है,
3: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आइए अब सुनते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से ये गीत, स्वर आतिफ असलम और चिन्मया श्री प्रदा का है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आइए अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है लुका छुपी, स्वर तुलसी कुमार का है और इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।

आइए अब सुनते हैं नेहा कक्कड़ और अरमान मलिक को। फिल्म का नाम है वजह तुम हो। इस गीत को लिखा है कुमार ने और धुन बनाई है गौरव रोशन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से ये गीत, स्वर शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल का था। आइए अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है तुम्हारी सल्लू। स्वर गुरु रंधावा का है और इस गीत को लिखा है गुरु रंधावा ने और इसे संगीतबद्ध किया है गुरु रंधावा और रजत नागपाल ने।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में सन ऑफ सरदार फिल्म से ये गीत।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: आइए अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं बादशाहो फिल्म से। स्वर जुबिन नौटियाल और नीति मोहन का है। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

फिल्म तुम बिन के इस बेहतरीन गीत से लिखा था फैज़ अनवर ने, और आवाज़ थी सोनू निगम की, और संगीत था निखिल विनय का। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 MHz पर। दिन के 11 बज चुके हैं और अब इंतज़ार होता है ख़त्म। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम, फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर प्रस्तुत है बेहतरीन कार्यक्रम आपकी फरमाइशों पर। मैं हूं मालकौंस। श्रोताओं, कुछ रिश्ते आवाज से बनते हैं तो कुछ एहसास से, कुछ पल मुलाकातों से मिलते हैं, कुछ विश्वास से, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं, ऐसे भी होते हैं जो एक छोटे से पोस्टकार्ड में लिखे स्नेहिल शब्दों से जीवन भर महकते रहते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आपके भेजे हुए पत्र हमारे लिए केवल एक डाक का हिस्सा नहीं है या कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वे अब एक तरह से आपकी धड़कनों की दस्तक है हमारे दिल तक। हर पोस्टकार्ड में किसी को मुस्कान और मुस्कुराने की कारण छिपी होती है, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई याद, किसी का अपनापन और किसी गीत से जुड़ी अनमोल स्मृतियाँ भी होती हैं आपके प्यारे से खतों में। आज जब दुनिया एक स्पर्श भर में भी संदेश भेजने की आदि हो चुकी है, यानी कि सोशल मीडिया का जमाना आप जानते हैं, तब भी कोई श्रोता समय निकालकर पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद लिखता है, उसे डाक के हवाले करता है और फिर धैर्य से उस गीत के प्रसारण की प्रतीक्षा करता है। तो यह केवल एक फरमाइश नहीं होती, बल्कि आकाशवाणी बीकानेर और हर आकाशवाणी के प्रति उसके अटूट स्नेह और विश्वास का एक सुंदर प्रमाण होता है। बीकानेर की इस रेत से लेकर हिमालय की वादियों तक, समुद्र तटों से लेकर देश के दूरस्थ गांवों तक, जब जब आपके पत्र हमारे पास पहुंचते हैं, ऐसा लगता है मानो पूरा भारत अपनी अपनी बोली, अपनी भावनाएं और अपनी अपनी संगीत रुचि लेकर इस एक महफिल में शामिल हो गया है। तो सच कहें तो आपकी लिखावट ही हर पंक्ति हमारे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। तो आइए शाही की महक, शब्दों की ऊष्मा और सुरों की मिठास से सजी इस आत्मीय महफिल का आगाज करते हैं। खोलते हैं आज की पत्र पिटारी, पढ़ते हैं आपका पहला स्नेही संदेश और सुनते हैं आपकी पसंद का पहला मधुर फिल्मी गीत। तो श्रोताओं, प्रेम की अनुभूतियां अक्सर बिना आहट के जीवन में उतर आती हैं, तो उससे ही जुड़ा एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, पहला जिसे फरमाइश करने के लिए हमारे पास खत आए हैं। देखिए कहां कहां से, पवनपुरी बीकानेर से, भंवरलाल सोनगरा प्रेमी, गीता रानी, राज मनोहर लाल, बी एल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज, कृष्ण मुकेश सोनगरा, सावित्री मिस्त्री, सीताराम पवार, दिफू पवार, आशीष और जतिन सोनगरा। इस प्यारे से गीत के बारे में क्या बताएं जी, जब कोई चेहरा दिल के करीब आ जाए, कब कोई मुस्कान यादों का हिस्सा बन जाए और कब एक साधारण सी मुलाकात ही जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास बन जाए, इसका हिसाब किसी के पास नहीं होता। और इसी अनकहे जज्बातों को बेहद मधुर शब्दों में और सुरों में पिरोया है हमारे आज के इस पहले गीत, जो फिल्म का नाम है शक्ति। स्वरों की इस मोहक जुगलबंदी को अपनी आवाजों में अमर बनाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

तो पर्दे पर इसे साकार किया था अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल ने। तो आइए आपकी फरमाइशों की इस महफिल को आगाज करते हैं, सुनते हैं। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।

श्रोताओ, प्रेम की सबसे जो कह सकते हैं सुंदर बात यही है कि वो कभी शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे मन की दहलीज पर दस्तक देता है और कब दिल में अपना घर बना लेता है इसका एहसास भी बाद में होता है। शायद इसीलिए प्रेम की सबसे सच्ची कहानियां अक्सर चुपचाप ही जन्म लेती हैं। इसी नाजुक एहसास को एक बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी। ये सदाबहार नगमा अपने मधुर संगीत, भावपूर्ण बोल और आत्मीय गायन के कारण आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है। आर डी बर्मन का वो कालजयी संगीत, जावेद अख्तर के बेहतरीन बोल और ऊपर से कविता कृष्णमूर्ति की ये सुमधुर गायकी, क्या कहें। सुनते हैं ये गीत, पर पहले जानते हैं कि इस प्यारे से गीत को आप तक पहुंचाने के लिए फरमाइशें कहाँ से आई है। सुराना मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराना, शरद सुराना, मयंक सुराना, विमल अभानी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोशन अली मिस्त्री इसी गीत को सुनना चाहते हैं। लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज, सोनू, टीना, वाहिदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पवार और खातून बेगम। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, प्यार हुआ चुपके से।

जब हम किसी को दिल दे देते हैं तो लगता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो रचना है वही है, हमारा मीत है, जो हमारा दिलदार है, वो उसी से सुंदर, उससे प्यारा, उससे बेहतरीन कोई है ही नहीं। तो ऐसी ही सोच हर इंसान की हो जाती है जब वो दिल दे बैठता है, और फिर जब चाहे जब किसी के सामने आए वो हमेशा यही कहता है कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो इतने प्यारे हैं, वो इतने बेहतरीन हैं। तो ऐसे ही भावनाओं को, इन कोमल भावनाओं को सुमधुर स्वरों में पिरोया है अगले गीत में। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात, और इस मधुर गीत को अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने, और संगीत आनंद मिलिंद का है। और प्यारे से गीत को हम तक पहुंचाने के लिए फरमाइश आई है शीतला गीत बीकानेर से, मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, सुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली, अमर सिंह पूरा बीकानेर से, मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो और मोहम्मद कैफ उनका परिवार, मोमसर बाश्री डूंगरगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद असगर पमार, अकबर, राबिया, मुन्नी, बरकत हाजन, अजीज, गुलजार और असगर भाई। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये उस समय का अपने आप एक बेहतरीन और सुपरहिट गीत, मैंने किसी को दिल दे दिया।

श्रोताओं, कभी कभी प्रेम की शुरुआत इजहार से नहीं बल्कि मासूम सवालों और मीठी नोक झोंक से होती है। दो दिन जब एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं तो बातचीत भी गीत बन जाती है और सवालों में ही जवाब छिपे मिल ही जाते हैं। ऐसे ही चुलबुली भावनाओं से सजा हमारा अगला गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से, सदाबहार गीत, बहुत ही मनमोहक धुन और SP बालासुब्रमण्यम की कमाल की गायकी आपको इसमें मिलेगी। इस फिल्म के सभी सुपरहिट गीत हमने आपको रेडियो पर सुनवाते रहते हैं, तो आज इस गीत की बारी है क्योंकि आई है फरमाइश ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से। GP दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे, उनके परिवारजन सुनना चाहते हैं ये गीत। बल्लभ गार्डन बीकानेर से LC शहजादा, कमला देवी पवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक अनन्या, सत्यनारायण पवार, लालचंद पवार। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास खत आया चौथी नकुआ बीकानेर से राजेंद्र कुमार।

फरमाइश। ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे, उनके परिवारजन सुनना चाहते हैं ये गीत। बल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक अनन्या, सत्यनारायण पवार, लालचंद पवार। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास खत आया चौथी नकुआ बीकानेर से, राजेंद्र कुमार पांडे और उनके परिवारजन चाहते हैं कि हम उनके सवालों का जवाब पूछें। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

का असर ऐसा होता है कि हर ख्याल पर बस एक ही नाम छा जाता है। दिलों में दिन हो या रात, महफिल हो या तन्हाई, दिल का दिमाग में कोई कनेक्शन जो है वो ऐसा बन जाता है कि उसकी बस उसी की याद बसी रहती है। तो सचमुच लगता है कि दुनिया की बाकी सारी बातें जैसे कहीं पीछे छूट गई हैं। इसी गहरे एहसास को सुरों में ढालता है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है नगीना और इस प्यारी सी गीत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया है मोहम्मद अजीज साहब ने। तो सुनते हैं आपका पसंद का गीत और इस गीत को, इस प्यारे से और कह सकते हैं कि उस उम्दा गीत को हमें सुनवाने के लिए फरमाइश आई है जेएनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही। इसी गीत को सुनना चाहते हैं विनोबा बस्ती बीकानेर से हरीश कुमार सियोता उनका परिवार, कोरियान मोहल्ला बीकानेर से इकरामुद्दीन कोहरी और उनके साथी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत कि आजकल याद और कुछ भी रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। तो याद आने से पहले चले आइए और जाइए फिर जाने जाने के बाद।

बेहतरीन नगमा ऐसा लगता है कश्मीर की वादियों से लेकर अफगानिस्तान की फिजाओं तक घुमा के लेके आ गया ये गीत लक्ष्मी प्यारे का संगीत। श्रोताओं, फिल्मी संगीत की तो यही खासियत है कि अच्छी धुनें और यादगार गीत समय की सीमाओं में बंधे नहीं होते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन ये नगमे नए रंग रूप में फिर लौट आते हैं और एक बार फिर श्रोताओं के दिलों पर छा जाते हैं। ऐसा ही एक सदाबहार गीत है फिल्म दिल का, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले। दिलचस्प बात यह है कि इस गीत की धुन और मुखड़े को हाल ही में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म धुरंधर में भी एक नए अंदाज में पेश किया गया और नई पीढ़ी ने इस नए युग एक नए रंग में अपनाए इसे, जबकि पुराने श्रोताओं के लिए ये सुनहरा नॉस्टैल्जिया बनकर वापस लौटा है। तो आइए पहले सुनते हैं इस मूल गीत का जादू जिसने वर्षों पहले करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई और जो आज भी उतना ही ताजा महसूस होता है। पेश है फिल्म दिल का ये गीत, आनंद मिलिंद का है संगीत, लिखा है से समीर ने और अनुराधा पौडवाल तथा उदित नारायण के स्वर से सजा हुआ है। इस गीत को सुनना चाहते हैं कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री, उनके परिवारजन बीकानेर से ही, रमजान अली लखारा और उनके साथी, चुनवेरा चौक से शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज बानो, साजिद मुगल और उनका परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं, देशनोक बीकानेर से गोपाल राम, प्रकाश दान और भूमदान। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहतरीन गीत फिल्म दिल से।

श्रोताओं, कभी कभी किसी खास इंसान की मौजूदगी ही जिंदगी के मायने बदल देती है। उसके आने से खुशियां भी जैसे दोगुनी हो जाती हैं, मौसम भी रंगीन लगने लगता है और हर धड़कन एक नई धुन गुनगुनाने लगती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को बड़े ही चटक और रंगों और जोशीले अंदाज में पेश करता है हमारा अगला गीत। फिल्म खुदगर्ज का है ये गीत, सुपरहिट डांस नंबर है, आज भी किसी महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए काफी है। पर्दे पर गोविंदा और नीलम की शानदार जो प्रस्तुति थी वो भी इसे बेहतरीन बना देती है, बेहतरीन तालमेल में इसे और यादगार बना दिया है। कह सकते हैं कि इस गीत का मधुर संगीत जो है वो आज भी थिरकने को किसी को भी मजबूर कर सकता है। ये बजे और कोई डांस ना करे ऐसा होता नहीं है ना, और ये संगीत थिरकने वाला संगीत दिया है राजेश रोशन ने, बोल है इंदिवर के। तो सुनते हैं ये बेहतरीन नगमा और

कि साथ ही थिरकने पे हो जाते हैं मजबूर, जो हमें मजबूर करने वाले हैं इस गीत की फरमाइश करके, वो है दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल बेनीवाल, शांति, मंजू, मोहित, हेमंत बेनीवाल इसी गीत को सुनना चाहते थे, श्री कोलायत से फूसरा सोनी और उनके परिवारजन, सागर शहर से ओम प्रकाश, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, और कोलपुर उदयपुर से गोपाल कांता ननवाया, गोपाल तिलक ननवाया, सक्षम तांबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम और जगदीश मोदी। तो सुनते हैं आपकी पसंद का आपके आ जाने से।

और अब विदा लेने का समय आ गया है। कहते हैं संगीत कभी समाप्त नहीं होता। गीत के स्वर भले ही थम जाए लेकिन वे अपने पीछे स्मृतियों की एक लंबी अनुगूंज छोड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने किसी प्रियजन को लिखा हुआ एक पत्र जिसे बार बार पढ़ने का मन करता है क्योंकि उसमें केवल शब्द नहीं होते, भावनाएं भी सुरक्षित रहती हैं। श्रोताओं, आपके स्नेही पत्र ही आपकी पसंद कार्यक्रम की असली पहचान है और आपकी लिखावट में जो अपनापन झलकता है वही हमारी प्रकृति, हमारी प्रस्तुति को ऊर्जा देता है। इसलिए अपने मनपसंद फिल्मी गीतों की फरमाइश, अपने विचारों और अपने स्नेह भरे संदेश को हमें निरंतर भेजते रहिए। हमारा पता आप नोट कर सकते हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, ढोला मारू चैनल, आकाशवाणी बीकानेर, 334001। पता दोबारा नोट कर ले, आपकी पसंद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक, ढोला मारू चैनल, आकाशवाणी बीकानेर, 334001। आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। हो सकता है अगली बार आपकी पसंद भी इसी महफिल की शान बने और अपना नाम आप पूरे देश के साथ सुन पाए। फिलहाल मुझे मालकोंस आचार्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल, जहां सुरों के साथ जुड़ते हैं दिल और दिलों से बनते हैं रिश्ते। नमस्कार। अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: फोनी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबुवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वो द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.6

105 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में यानी कि दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से संधि कार्यक्रम। फिल्म संगीत आप लुफ्त ले पाएंगे इसी सभा में दोपहर 12:40 पर, और उसके बाद 2:30 पर फिर से आप फिल्म संगीत सुन पाएंगे। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत हमेशा की तरह दोपहर 1:05 पर। आज लेकर आएंगी बिंदु शर्मा और ज्योति वर्मा। आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, मन के हारे मन के जीते जीत है मन के हारे हार, मानसून के द्वारा आंखों में इन्फेक्शन पर चर्चा होगी, सुकन्या समृद्धि योजना भी आप सुनेंगे, बच्चों को कैसे सिखाएं गुड और बैड टच के बारे में, और इसी के साथ आपको सुनवाई जाएगी एक वार्ता, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव। रसोई और ब्यूटी से टिप्स तो होंगी ही, फिल्म संगीत के साथ कार्यक्रम आपके कार्यक्रम महिला जगत में। हमारी संध्याकालीन सभा में युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा 5:05 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा कैच द रेन। लघु जानकारी होंगी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, औषधीय पौधों के बारे में और डेविस कप के बारे में। फिल्म संगीत से गुथा और रोजगार समाचार से जुड़ा रहेगा आपका युववाणी कार्यक्रम। लेकर आएंगी शारदा नैन और सुखमनी कौर 5:05 पर। फिल्म संगीत का लुत्फ आप ले पाएंगे सायंकालीन सभा में 6:05 पर, उसके बाद रात्रि 8:00 और उसके बाद में रात्रि 9:15 और 9:30 पर भी आप ले पाएंगे फिल्म संगीत का आनंद। जिले की चिट्ठी लेकर आएंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 6:42 पर। कार्यक्रम ग्रामीण जगत लेकर आएंगे रामस्वरूप बिश्नोई और सत्यनारायण शर्मा 7:00, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री, बीज का टीकाकरण, बीजोपचार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, लोकगीत, मौसम जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो होंगे ही कार्यक्रम ग्रामीण जगत में 7:00 से। सुगम संगीत सुनेंगे आप सायंकालीन सभा में 7:45 पर, जबकि लोकगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8:30 पर।

हमारी रात्रिकालीन सभा में रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक समय रहेगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार मर्दुर का गायन। रात्रि 10 बजे से ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

हाजिर आयो खड़ी अवां जो पेंजो सिंधी प्रोग्राम सबनी सामाइन के अनुष्का रंगानी जो प्यार भरियो नमस्कार साथियों आज महीने जो बियो आर्तवार आहे ऐ बियो आर्तवार मुकरर थींदो आहे असान जी जानुन लाए जी हां दोस्तों आज अवां बुधना जालुन जो खास प्रोग्राम मुंजो घर मुंजो संसार ऐ आज जे प्रोग्राम में अवां बुधंदा एक गाल बोल ऐ गडोगड मजो माणींदासी गीत संगीत जो अज जी खास पेशकश शुरू करण खा अग चर्चा कंदासी अज जे खास दिए जे बारे में जी हां साथियों 12 जुलाई ते हर साल वारी ऐ मिट्टी जे तूफान के मुंह देण जो आलमी दी मल्हायो वेंदो आहे इन जी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सन 2023 में कई हुई इन जो मकसद इंसानी सेहत माहौल ऐ खेतीय ते इनन तूफानन जे तबाह कंदड़ असर बाबत सुजागी पैदा करण आहे वारी ऐ मिट्टी जा तूफान सजी दुनिया में 151 खां वधिक मुल्कन ते असर थींदो आहे जैसा खेती परिवहन ऐ इंसानी सेहत ते तमाम खराब असर पवंदो आहे इन डीं के मल्हाइण जो मकसद हिनन तूफानन सां लागापो रखंदड़ खतरन जे इंतजाम करण अगवाट ही खबरदार करण ऐ जमीन जो स्थाई इंतजाम जो वाधारो करण लाए आलमी सहयोग के मजबूत करणो आहे ऐ साथियों हाण प्रोग्राम में अचो त मजो माणियो लता मंगेशकर जी आवाज में गातल हल त भजी हलूं फिल्म जे हिन सुहिणे गीत जो

0: साथियों, शिक्षा असांजे जीवन जी सभी का वड़ी पूंजी आहे। यो रुगो किताबी ज्ञान काने, पर असा के सही ए गलत में फर्क सिखारे, एक सुठो ए आत्मनिर्भर मानू ठाए थी। ही असा के इज्जत डारे थी, रोजगार जा मौका डारे थी, ए असांजे शख्सियत के वधाए थी। शिक्षा हर मानू जे जीवन में एक खास किरदार निभाए थी, भले हु मर्द हुजे या औरत। पर औरतुन के सिख्या का परे रखियो वेंदो आहे, ए उनन के घर जे कमकार ताई महदूद रखियो वियो आहे। पर अज जे वक्त में जालूं पंहिंजे हकन लाइ विड़ी रही वन, ए शिक्षा जे जरिए पंहिंजे जीवन के बेहतर ठाहिण जी कोशिश करे रही वन। शिक्षा सां औरतूं पंहिंजे परिवार ए मुल्क जे वाधारे में एक खास योगदान करे सघन थियूं। हू पंहिंजे ॿारनि खे बेहतर शिक्षा ॾेई पंहिंजे परिवार जी माली हालत में सुधार करे सघन थियूं, ऐं समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाइ मदद करे सघन थियूं। हिन खां सवाइ शिक्षा सां औरतूं पंहिंजे सिहत ऐं पोषण लाइ सुजाग थी सघनि, ऐं पंहिंजे परिवार जी सिहत जी सार संभाल बि करे थी सघनि। हू पंहिंजे हक़नि लाइ विढ़ी सघनि थियूं, ऐं पंहिंजे जीवन में आज़ादी ऐं आत्मनिर्भरता पाए सघनि थियूं। साथियूं, अचो हिन बाबति ॿुधूं हिकु ॻाल्हि ॿोल, ज़ालुनि लाइ शिक्षा जो महत्व। रेखा रानी जी सां ॻाल्हि ॿोल करे रही आहे प्रिया नंदवानी।
1: जालुनि जे प्रोग्राम में अॼु असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं जालुनि लाइ शिक्षा जो महत्व। हिन उनवान ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असांजे स्टूडियो में आयल असांजी महिमान रेखा रानी जिन सां, जेके की वाइस प्रिंसिपल आहिनि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बांकरोटा जयपुर जी। रेखा जी, तव्हांजो असांजे आकाशवाणी जे स्टूडियो में घणो घणो स्वागत आहे। रेखा जी, असां ॿई जालू आहियूं, छोकी असां ॿई पढ़ियल लिखियल बि आहियूं, ऐं असांखे सुठो लॻंदो की असां पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे ॿुधायूं की जालुनि लाइ शिक्षा जो महत्व छा आहे। त सभ खां पहिरीं त मां तव्हां खां इहो ई ॼाणणु चाहींदसि की अगरि जेका ज़ाल पढ़ियल लिखियल हूंदी आहे त ज़ाल जी शिक्षा खे समाज जी प्रगति जो पहिरियों ॾाको छो मञियो वेंदो आहे?
2: छोकी समाज ठहियल ई परिवारनि सां आहे। समाज जी पहिरीं इकाई परिवार आहे। परिवार जी जेकी नींव हूंदी आहे उहा माई हूंदी आहे, मतलब जालू हूंदियूं आहिनि। अगरि जालू पढ़ियल लिखियल हूंदियूं त उन परिवार जी स्थिति जेकी

0: अलग ही हूंदी इन लग चूंकि अगर महिला शिक्षित हूंदी त उहा थोड़े मां थोड़ो भी बचाईंदी बचत कंदी बचत कंदी त ताकि पतो कि बचत जेको है केड़े न केड़े रूप में मतलब इन्वेस्टमेंट जो रूप वठनो है तो वो पांच समाज ला लाभदायक है
1: बिल्कुल
0: जी पान डिठो होंदो कि भाई खंड जे दबन में भी पैसा मिलना है
1: नहीं
0: तो ये है कि नंडी थोड़ी थोड़ी शय में बचत करनी है नहीं बारन के भी सिखारनी है तो बार भी एड़ा सुठा नागरिक खाली बचत पैसे जी ना जी हां पानी वेस्ट न करन बार है ये सब कुछ पढ़ियल लिखियल जेकी माई हुंदी है उन खा सिखंदा आहिनि बार
1: बिल्कुल ज़ाल अगरि पढ़ियल लिखियल हूंदी आहे त उहो पंहिंजे परिवार खे ॾाढो सुठे नमूने हलाइण जो हिकिड़ो मादो रखंदी आहे ऐं उहा परिवार खे जॾहिं सुठे नमूने हलाईंदी आहे त परिवार विकसित थींदो आहे समाज थींदो आहे तंहिंखां पोइ देश बि थींदो आहे
0: जीअं महिला ॿारनि में सुठा संस्कार विझंदी त उहे सुठा नागरिक ठहींदा त समाज त हूअं ई मतिलबु सुसंस्कृति थींदो ऐं ॿियो छा आहे की जेकी पढ़ियल लिखियल महिला हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ख़ुदि जे अधिकारनि जे प्रति उहे जागरूक हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे अधिकारनि जो बि पतो हूंदो आहे त जंहिंसां बिल्कुल खुली सोच वारो समाज जेको आहे उहो विकसित थी
1: ऐं खुली सोच हूंदी आहे त हिकिड़ी ज़ाल हूंदी आहे न उहा दॿियल कोन हूंदी आहे उहो पंहिंजो डिसीजन पावर पंहिंजे हथ में रखंदी आहे की मूंखे छा करणो आहे ऐं छा न करणो आहे हिकु ज़ाल हिकु माउ जॾहिं पढ़ियल हूंदी आहे त उन जे लाइ शिक्षा जो महत्व छा आहे
0: पढ़ियल लिखियल अगरि ज़ाल हूंदी त उन लाइ शिक्षा जो महत्व मतिलबु पूरे परिवार लाइ सभिनि खां पहिरीं त ॿारनि लाइ आहे ॿारनि जो हर तरह जो विकास चाहे शारीरिक हुजे या मानसिक शारीरिक विकास लाइ उनखे इहो पतो आहे की कहिड़ा पौष्टिक तत्व हुजणा खपनि उन्हनि जी रोटी में ऐं स्वास्थ्य संबंधी बि उहा नंढी कहिड़ी कोई बीमारी हूंदी आहे त मतिलबु उनजे लक्षणनि सां ई पहचाने रखंदी आहे त उन्हनि जो परिवार बि हिकदमि स्वस्थ हूंदो आहे वॾनि लाइ बि ऐं उन्हनि छा कंदी आहे की शिक्षित माई जेकी हूंदी आहे उहा परिवार जे हर डिसीज़न में मतिलबु भागीदार हूंदी आत्मनिर्भर बि हूंदी आहे अगरि उहा माई कमाए थी मतिलबु त छा आहे की उहा आर्थिक संबल बि ॾींदी आहे परिवार खे ॿियो छा आहे की ॿारनि खे ख़ाली शारीरिक विकास ते ध्यानु कोन ॾींदी आहे उन्हनि जे मानसिक विकास ते माना उहे पढ़णु वञनि था त उहे छा था पढ़ी अचनि मतिलबु टीचरनि सां बि कॉन्टेक्ट रखंदी आहे ॿियो छा आहे की अॼु सोशल मीडिया जो युग है ॿार छा था ॾिसनि मोबाइल ते उन्हनि जो बि पूरो ध्यानु मतिलबु शिक्षित अगरि महिला हूंदी आहे त उहा सुठी तरह सां रखंदी आहे
1: ऐं सही ॻाल्हि आहे की ज़ालुनि लाइ शिक्षा जो घणो महत्व आहे छोकी ज़ाल ई हूंदी आहे उहा पंहिंजे ॿारनि जी परवरिश कंदी आहे ऐं अगरि ज़ाल पढ़ियल लिखियल आहे त उहा ॿार जे पैदा थियण खां वठी उनजी परवरिश हिकु पढ़ियल लिखियल तरीक़े सां कंदी आहे ऐं तव्हां जेकी ॻाल्हि चई की सोशल मीडिया ते बि सुठी तरह उहा एक्टिव रहे थी हिकु पढ़ियल लिखियल माण्हू हूंदो आहे त उहो ओवरऑल डेवलपमेंट पंहिंजे ॿार जो बि कंदो आहे ऐं घर जो बि कंदो आहे तॾहिं बि असां ॾिसंदा आहियूं की अॼु वॾनि शहरनि में त ज़ालुनि जी शिक्षा जो घणेई महत्व आहे ऐं ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे सुठे स्कूलनि में पाढ़ियो वेंदो आहे पर अञा बि घणेई कुरूतियूं असां ॾिसंदा आहियूं जेके ॻोठनि में थींदियूं आहिनि की नंढी उमिरि में छोकिरियुनि जी शादी कराए छॾणु ऐं उन्हनि खे स्कूल न मोकिलणु या परिवार जी आर्थिक स्थिति सही न हूंदी आहे त बि उन में चयो वेंदो आहे की छोकिरनि खे पढ़ाईंदासीं ऐं छोकिरियुनि जी पढ़ाई लाइ असांखे ख़र्च करण लाइ पैसा कोन्हनि त इहे जेके बि मुश्किलात आहिनि उहे पहिरियों त ॿुधायो उहे कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो समाधान कीअं थो थी सघे उहो बि असां ॿुधंदासीं
0: तव्हां चयो की भई बाल विवाह इहे सभिनि खां वॾी मतिलबु गांवनि में त ॾाढी आहे छोकी मां त शिक्षा सां जुड़ियल आहियां त 18 साल थी आहिनि त मूं शुरू खां ॾिठो आहे मतिलबु जीअं गांवनि में छा हूंदो आहे की अगरि चार भेनरूं आहिनि त भले ई नंढी भले 5 क्लास में पढ़णी हुजे उन रिश्तो पको करे रखंदा आहिनि त उन सां छा आहे की उन्हनि जे मन ते शरीर ते नंढी उमिरि में शादी थियण सां ॿारनि जे बि जेके उन्हनि जा ॿार थींदा आहिनि उन्हनि ते बि ऐं ख़ुदि जे मन शरीर ते नकारात्मक प्रभाव पवंदो आहे मतिलबु नेगेटिव इफेक्ट पवंदो आहे त उहे ओतिरा स्वस्थ कोन थी पाईंदा आहिनि ओतिरी उन उहे स्वतंत्र कोन थी पाईंदा आहिनि ओतिरो उन्हनि में आत्मविश्वास कोन थी पाईंदो आहे
1: बिल्कुल
0: इहा ॻाल्हि आहे इहो त बाल विवाह जो बि दहेज प्रथा आहे अगरि महिला शिक्षित हूंदी न त उहा अवेयर हूंदी उन लाइ त छोकिरो छोकिरी ॿई बराबरि आहिनि त उहा दहेज प्रथा खे बिल्कुलु तवजो कोन ॾींदी त उन इन कुरूतियुनि जे ख़िलाफ़ आवाज़ बि खणे
1: बिल्कुलु अगरि असां ॾिसूं था की ज़ाल पढ़ियल लिखियल आहे त उहा अॼु पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहे ऐं उहा नौकरी करे थी त उहा कंहिं बि मुक़ाम ते छोकिरनि खां घटि कोन्हे ऐं जॾहिं उहा पंहिंजो सुठो अर्न करे थी त पोइ उहा दॿियल बि न रहंदी आहे उहा कंहिं ते डिपेंडेंट कोन हूंदी आहे ऐं जॾहिं उहा डिपेंडेंट कोन हूंदी आहे त घणेई कुरूतियूं पाण ई घटिजी वेंदियूं आहिनि जिन में की तव्हां ॻाल्हि कई की दहेज प्रथा आहे ऐं बाल विवाह आहे इन वांगुरु ॿियूं बि घणेई दिक़तूं हूंदियूं
0: हाणे लैंगिक भेदभाव पाण बचपन खां ॾिसूं था भई छोकिरियुनि जो कमु आहे जीअं रधणे जो कमु छोकिरियुनि जो ई आहे ऐं अन पढ़ण जीअं छोकिरनि जो कमु आहे हा न त इहे बि आहिनि इहे लैंगिक भेदभाव जेके अगरि ज़ालूं पढ़ियल लिखियल थियूं हुजनि त इहे भेदभाव ॾिसण लाइ कोन मिलंदा आहिनि घरेलू इंसान अॻिते शिक्षित माई हूंदी त उन ख़ुदि अधिकारनि

0: प्रति जागरूक हूंदी, हुनखे पतो हूंदो कहिड़ा अधिकार आहिनि, त जल्दी सां उहो घरेलू हिंसा जी शिकार कोन थींदी, उन खिलाफ़ आवाज़ बिल्कुलु खणंदी।
1: हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं कि ज़ालुनि खे उथारण लाइ, उन्हनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारण लाइ असांजी सरकार बि घणेई कदम खणी रही आहे, ऐं तव्हां त ख़ुदि बि वाइस प्रिंसिपल आहियो सरकारी स्कूल जा, त तव्हां बि पंहिंजे स्कूल में घणेई अहिड़ा इवेंट्स बि कंदा हूंदा जागरूकता जा, कि सरकार असांजे लाइ ज़ालुनि लाइ ख़ासि करे छा-छा करे रही आहे, उहो असांखे ॿुधायो।
0: मतिलब छोकिरियुनि लाइ सरकार घणेई योजनाऊं हलायूं आहिनि, अगरि माण्हुनि में जागरूकता हुजे त छोकिरियूं आराम सां हायर एजुकेशन इज़ीली मतिलब अचीव करे थियूं सघनि। जीअं पहिरीं त हाणे तव्हां ॾिसो पिया कि लैपटॉप फ्री पिया मिलनि, साइकिल फ्री थी मिले ऐं स्कूटी बि, इहे कहिड़े ॿारनि खे मिलंदी आहे? जीअं साइकिल जो आहे त असांजे स्कूल में जेके नाइन्थ पास छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे साइकिल वितरण हूंदी आहे, जेके बि पास कंदी।
1: अच्छा, त मां हिते तव्हांखां इहो पुछंदसि कि जेके बि असां छो की ॾिठो कोन्हे, असां उन फील्ड जा कोन आहियूं, त छा इहो वाकई सच आहे कि सरकार इहो सभु प्रोवाइड कराईंदी आहे छोकिरियुनि खे?
0: बिल्कुलु बिल्कुलु, हर साल जेके बि नाइन्थ में, ऐं उनजो कारण बि इहो आहे छो की वॾियूं छोकिरियूं थींदियूं आहिनि त उन्हनि जी पढ़ाई

0: जो प्रावधान है, सुठा मार्क्स अगर 12th में हो जानता है तो स्कूटी भी तो मतलब के थ्रू आई लैपटॉप जी टेक्नो फ्रेंडली ठारणला मतलब लैपटॉप असा तो बचपन में करे कंप्यूटर भी कौन डेट हो लेकिन हाँ बारन के ऋषि करे मतलब डाढ़ी खुशी थी है कि 10th में सुठा मार्क्स अचन तो उन्होंने के लैपटॉप भी मिलना है
1: तो ही सब जदी मतलब सरकार स्कीम लागू कर दिया है तो बारन में और खास कर छोकरों में एकड़ो हिर्स भी थींदो है पर जो कि मां भी मुझे भी ये सब शयों मिलन
0: बिल्कुल मोटिवेशन मिलंदो है इन अलावा मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ भी सरकार डाढ़ो ध्यान थी दे जी असांजे स्कूल में हर हफ्ते आयरन जी गोलियो दींदा इन उन्हें के
1: अच्छा
0: हां छोकरन के असांजे स्कूल में छ सरकारी स्कूल सबिन में ही मतलब आयरन जी गोलियो दींदा छो की महावारी जे टाइम छ इन में एनीमिया थी विंदो है खून जी कमी थी विंदी इन ला उड़ान एक योजना है उन्हें तहत पहरी जी गांवन में अवेयरनेस कौन भी था मानु कपड़ो भी यूज करना हुआ महावारी जे टाइम हाँ मतलब सैनिटरी नैपकिन फ्री मिलना है हर महीने पैकेट तो हाँ थोड़ी जागरूकता भी वधी है उन्हें जो स्वास्थ्य भी सही थियो है
1: घणी सुविधाओं असांजी सरकार दे रही है पर तें हुंदे भी असां ॾिसूं था कि भेदभाव तो आहे ही छोकरियुनि जी पढ़ाई में शहरन में तो असां ॾिसूं था कि वरी भी घर मां निकरन थियूं छोकरियूं पर गांवन में एतिरो न आहे त मां तव्हां खां इहो भी ॼाणण चाहींदसि कि गांव ऐं शहर में ज़ालुनि जी शिक्षा में कहिड़ा अंतर आहिनि ऐं इन्हनि खे कीअं दूर करे थो सघिजे
0: गांव में ही जी शहर जी छोकरियूं आहिनि उन्हनि जी शिक्षा में इहो अंतर आहे कि गांव में मतलब पढ़ते पढ़ते स्कूल आहिनि ॾाढा परे परे स्कूल आहिनि जी ऐं शहर में छा आहे कि पासे पासे में स्कूल आहिनि ऐं टीचर बि तव्हांखे अवेलेबल सॼा मिली वेंदा छोकी हर कोई शहर में पोस्टिंग चाहींदो आहे मतलब मूंखे लॻे थो उते भले ई नामांकन बि घटि आहे ऐं ॿियो छा आहे कि समाज जो वातावरण गांव जो जेको अहिड़ो आहे उन्हनि जी सोच बि अहिड़ी आहे मतलब ओतिरी विस्तृत कोन थी आहे जेतिरी शहरनि में थी ॿियो इन अलावा जीअं छोकिरियूं आहिनि उन्हनि ते खाली घर जो ई कोन्हे खेत आहे चूल्हा चौकियूं मतलब सबको ज्यादा उन्हनि ते बोझो है मूंखे लॻे थो ग्रामीण परिवारन में ऐं ग्रामीण शिक्षा छा छा आहे ग्रामीण शिक्षा में एतिरो स्कोप बि कोन्हे कि बसि हा स्कूल पढ़ी करे अची आहे मतलब हिते छा आहे कि जीअं हाणे मुस्कान फाउंडेशन जो उदाहरण है असांजे स्कूल में घणेई एनजीओज ईंदा आहिनि जीअं मुस्कान फाउंडेशन ईंदी आहे उहे ज्यादातर हर महीने हिकु टूर कंदियूं आहिनि असांजे ऐं ॿारनि खे सेखारींदियूं आहिनि कि छा मतलब कीअं स्वस्थ रहिजे जेको तव्हांखे मां सैनिटरी नैपकिन ॿुधायो उहो बि पूरो मतलब सुठी तरह सां ॿुधाईंदा आहिनि गुड टच बैड टच बि ॿुधाइण लाइ मतलब घणेई शयूं ॿुधाइण लाइ एनजीओज ईंदा आहिनि जेके मूंखे लॻे थो कि गांव में घटि आहिनि
1: त गांव में हिकिड़ी जेका जागरूकता हूंदी आहे उहा घटि आहे ऐं शहरनि में वधीक आहे ऐं एनजीओ मार्फत काई पंचायत मार्फत बि ॻाल्हियूं अगरि जागरूक कनि थियूं त ऐं शिक्षा जे प्रति छोकिरियुनि जे रुझान खे वधाइनि थियूं त उहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे इहो बि ॿुधायो कि जॾहिं हिकु ज़ाल शिक्षित हूंदी आहे घर जी ज़ाल चाहे वह कें भी रूप में हुए तो वह स्वास्थ्य ए स्वच्छता ए पोषण के बारे में जागरूकता किए फैलाए थी सके
0: जी मूं तव्हांखे ॿुधायो की भई माउ ई शिक्षित हूंदी त हुनखे पतो हूंदो पहिरीं छा हो की दाल रोटी जो मतिलबु ई खाली छा हूंदो हो की बसि दाल रोटी आहे त इहो भोजन आहे लेकिन अॼुकल्ह छा आहे की मायूं जेकी ज़ालियूं आहिनि उहे शिक्षित आहिनि उन्हनि खे पतो आहे की हर पूरी तरह सां पौष्टिक आहार हुजणो खपे थाली में सभु विटामिन्स बि हुजणा खपनि प्रोटीन बि हुजणा खपनि त इहे सभु शयुनि जो ध्यानु खाली शिक्षित महिला थी रखी सघे जंहिंसां छा आहे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याऊं जेकी हूंदियूं आहिनि उहे घटि थींदियूं आहिनि
1: रेखा जी असांखे इहो बि ॿुधायो की गांव जी ऐं शहर जी छोकरियुनि में शिक्षा ग्रहण करण जे अंतर खे असां कीअं मिटाए था सघूं अहिड़ा कहिड़ा अभियान हलाया वञनि छा कयो वञे जंहिंसां इहो जेको अंतर आहे उहो घटिजी सघे
0: मतिलबु गांव खे हाणे पाण पूरी तरह सां शहर जी कॉपी त कोन था करे सघूं लेकिन गांव जी छोकरियुनि खे छा आहे की मूंखे लॻे थो की कहिड़ो न कहिड़ो हुनर मतिलबु अहिड़ो हुजे छोकी हिते बि स्किल डेवलपमेंट जा प्रोग्राम हलंदा आहिनि शहरनि में त हलंदा आहिनि जीअं हाणे मां ॿुधायां पियो स्टूडेंट मूंखे मिली हुई हिकु डिपार्टमेंटल स्टोर में वई हुअसि त उते हुनखे मूं ॿुधायो मूं चयो पढ़ाई छॾे छॾी चई पढ़ाई भी करा पी ऐं डिस्टेंस एजुकेशन सां ग्रेजुएशन भी करा पी 12th खां पोइ ऐं मां हिते कम बि कंदी आहियां त अहिड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जेकियूं आहिनि की शहर हाणे गांवनि में कीअं मिलनि गांवनि में त हेॾा वॾा वॾा स्टोर कोन्हनि त छा आहे की नंढियूं नंढियूं शयूं जीअं तव्हां ॾिसो हूंदो की ॾाढा सारा स्किल डेवलपमेंट जीअं कशीदाकारी आहे या पोइ अचार आहे पापड़ आहिनि इहे मतिलबु घणेई सारियूं नंढा नंढा जेके उद्योग आहिनि उहे हलाए करे बि माण्हू अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते बि पहुचाइनि जीअं रूमा देवी आहे रूमा देवी जो उदाहरण ॾियणु
1: चाहींदा
0: मेर जो एक नंडो सो गांव है रावतसर उते जी एक छोकरी भी जिन 4 साल में मापी गुजारे वे 17 साल में शादी थी वही 8 पास भी अज ता उन जो मतलब गूगल ते नाम विझना हो तो ताके मतलब इंटरनेशनल लेवल जी सेलिब्रिटी जी तरह ता उन जो नाम मतलब ताके मिली विंदो यो इन कारण पॉसिबल थियो छो की उन दादी उन कशीदाकारी सिखारी हुई उन कशीदाकारी सा अज मतलब 22,000 माइन के हुआ प्रशिक्षण डे पे उते गांवन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो उन्हें मतलब एक

0: लेक्चर गेस्ट लेक्चर ॾियण लाइ बि घुरायो हुओ त ऐं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जेके आहिनि उन्हनि हिननि खे नारी शक्ति पुरस्कार ॾिनो आहे त मां चवंदी आहियां हिकु मिसाल आहे मतिलबु माइन लाइ ज़ालुनि लाइ भेनरुनि लाइ की गांव में बि रही करे ॾाढो कुझु करे था सघूं
1: बिल्कुलु तव्हां जेको असांखे मिसाल ॿुधायो आहे त मूंखे उन लेडीअ ते त गर्व थिए थो की हुन हेतिरी उपलब्धियूं पातियूं आहिनि पर असां सम्झी सघूं था असांजा ॿुधंदड़ ज़रूरु ई प्रोग्राम ॿुधंदा हूंदा की जॾहिं हिकु करे थी सघे त पोइ मां बि करे थी सघां उन में पोइ गांव ऐं शहर कुझु नथो करे सघे अगरि करण जो जज़्बो आहे त पाण कुझु बि करे था सघूं ऐं ख़ासि करे ज़ालूं अगरि ठाने वठनि की मूंखे करणो आहे त मां ज़रूरु कंदमि हिकु जेका शिक्षा हूंदी आहे न उहा शिक्षा सिर्फ़ु किताबी बि ज़रूरी न आहे अगरि पाण किताबी ज्ञान नथा खणूं ऐं कान का स्किल वठी करे बि अॻियां वधूं था ऐं पंहिंजे घर परिवार ऐं देश खे विकसित कयूं था त इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे
0: जेकी सोच आहे न मतिलबु रोज़गार सां छा आहे की ख़ाली इहो कोन्हे उहो ॿाहिरि निकिरनि थियूं सोच त उन्हनि जी डेवलप थिए थी
1: बिल्कुलु
0: त हूअं ई घणे कुरूतियूं त हूअं ई ख़तम थियूं थी वञनि ऐं उहे बि अवेयर थियूं थियनि ॿार जो माहौल ॾिसनि थियूं की भई हा कीअं मतिलबु परिवार खे समाज खे अॻियां वधायूं
1: बिल्कुलु पढ़ाई जे मार्फत वधनि था त वधीक सुठो आहे ज़ालूं पर अगरि उहे घर वेही करे बि वर्क फ्रॉम होम करे बि कुझु कनि थियूं ऐं बिज़ी रहनि थियूं ऐं सुठो कुझु कनि थियूं त मां घणेई ॻाल्हियूं कयूं जीअं पापड़ ठाहिणा खीचा ठाहिणा कशीदाकारी करे उहा एॾे वॾे मुक़ाम ताईं पहुती त पाण अनगिनत कम करे था सघूं सिखंदा रहूं और शिक्षा ज़ालुनि लाइ हर फील्ड जी ॾाढी ज़रूरी आहे जॾहिं असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं की ज़ालुनि जी शिक्षा हर फील्ड लाइ ज़रूरी आहे त हाणे मां तव्हां खां इहो पुछंदमि की जॾहिं ज़ाल हर फील्ड में अॻियां अची रही आहे त देश जी अर्थव्यवस्था ऐं विकास में शिक्षित ज़ालुनि जो छा योगदान आहे
0: इन जो जीतो जागतो एग्जाम्पल त पंहिंजी वित्त मंत्री जेकी आहे देश जो पूरो बजट पियल आहे मतिलबु निर्मला सीतारमण जी
1: पंहिंजी
0: वित्त मंत्री महिला आहे शिक्षित महिला आहे जेकी पूरे देश जो बजट हलाए थी सघे त पाण आराम सां मतिलबु महिलाऊं शिक्षित थी करे पूरे देश जे विकास में योगदान ॾेई थियूं सघनि मतिलब उहो छा आहे की ख़ुदि आर्थिक संबल बि ॾेई थियूं सघनि परिवार खे अगरि ख़ुदि कमाइनि थियूं इन जे अलावा अगरि उहे आत्मनिर्भर आहिनि त GDP में योगदान त ॾींदियूं ई ऐं ॿियो इन अलावा हर फील्ड में आहिनि अॼु चाहे नेवी हुजे आर्मी हुजे एयरफोर्स हुजे या डॉक्टर आहिनि इंजीनियर आहिनि कॉर्पोरेट्स आहिनि हर जॻह तव्हांखे मायूं मिलनि छोकी अधु आबादी महिलाउनि जी आहे जंहिंखे पहिरीं ॾाढो इग्नोर कया आहिनि लेकिन हाणे उहे अॻियां अचनि पियूं हिकु चवणी बि आहे की तूं न ठहिजांइ बसि रधणे में कमु करण वारी ऐं RCA में संभरण वारी तूं ठहिजांइ वजह पिता जे अभिमान जी तूं ठहिजांइ जवाब माता जे हर त्याग जी तूं ठहिजांइ अस्तित्व ख़ुदि जी पहचान जी
1: वाह वाह तव्हां त चार पंक्तियुनि में ही असांखे हिकिड़ी ज़ाल लाइ ॾाढो कुझु ॿुधायो की तूं सिर्फ़ु रधिणे में कमु करण वारी न ठहिजांइ तूं त देश जे ऐं माउ पीउ जे नाले खे रोशन करण वारी बणिजांइ ऐं ही हर ज़ाल करे थी सघे उहो पंहिंजो पाण खे कंहिं बि स्तर ते घटि न सम्झे जॾहिं एॾियूं ख़ूबियूं आहिनि ज़ालुनि जे पढ़ण जूं सिखण जूं उन्हनि जो महत्व तमामु घणो आहे ऐं तव्हां ॻाल्हि बि कई की अॼु ज़ालूं अधु आबादी आहिनि देश जी मर्दनि सां कंधे सां कंधो मिलाए करे हली रहियूं आहिनि त मां तव्हां खां इहो बि पुछणु चाहींदसि की समाज जे हर माण्हू खे ज़ालुनि जी शिक्षा लाइ कहिड़ी भूमिका निभाइणु खपे
0: ॾाढो सुठो सवाल आहे ऐं पहिरीं शुरूआत त परिवार खां ई थियणी खपे
1: जी
0: परिवार जी सोच अगरि पहिरीं छोकिरियुनि जी नियाणियुनि लाइ बदलनी तॾहिं ई सभु कुझु बदिली थो सघे त पहिरीं सोच ई आहे की मतिलबु घरनि में लैंगिक भेदभाव रोके ॿिन्हिनि खे बराबरि मञी बराबरि शिक्षा ॾियनि त देश अॻिते वधी वेंदो ऐं ॿियो आहे पोइ वरी सेकेंड स्टेप अचे थी स्कूल जॾहिं ॿार स्कूल में अचनि था त जेके बि आहिनि प्रिंसिपल आहिनि मास्टर आहिनि मास्टरनियूं आहिनि उन्हनि खे उन्हनि सां दोस्त जहिड़ो व्यवहार करणो खपे छोकी उन्हनि जूं घणेई समस्याऊं हूंदियूं आहिनि
1: बिल्कुलु
0: हाणे उहे कहिड़ी छोकिरियूं जेकियूं आहिनि उन्हनि जे पुठियां ॾाढियूं प्रॉब्लम आहिनि चाहे उहो ग़रीबी आहे या पोइ उन्हनि ते घर जे कम जो बोझ आहे या मतिलबु समाज जी कुझु अहिड़ी व्यवस्था आहे त इन्हनि खे अहिड़ो करणो खपे मास्टर ऐं मास्टरनि ताकी उहे कुझु समस्याऊं ॿुधाइनि ऐं खुली करे ॿुधाइनि ऐं अञा उन्हनि जो उहे उपाय बि ॿुधाइनि ऐं ॿियो छा आहे की असांजो बि हिकु हले पियो इनोवेटिव हाउस करे असांजो हिकु प्रोग्राम आहे जंहिंमें असां छा कंदा आहियूं हींअर अलवर जी हिकिड़ी दिवाकरी गांव जी हिकु छोकिरी आहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जेकी आहे हुन लाइ एडमिशन में सिलेक्शन थियो आहे असां छा अवेयरनेस प्रोग्राम ये करूं पिया मतिलबु छोकिरियुनि लाइ त जेके बि छोकिरियूं आहिनि मतिलबु असां उन्हनि खे हिकु फॉर्म ॾींदा आहियूं ताकी उहे ख़ुदि जे अंदरि जूं जेकियूं बि ॻाल्हियूं हुजनि कुझु अहिड़ा प्रश्न हूंदा आहिनि त उहे लिखी ॾींदियूं आहिनि त उन्हनि सां पतो पवंदो आहे की उन्हनि जूं छा समस्याऊं आहिनि त आउं चवंदी आहियां की चाहे माउ हुजे चाहे मतिलबु

0: टीचर हुजनि पर उन्हनि जो अहिड़ो व्यवहार हुजणो खपे कि ॿार ख़ुदि ई उन्हनि जूं समस्याऊं ॿुधाइनि।
1: सही ॻाल्हि आहे कि माउ पीउ हिकु त धीउ पुट में फ़र्क़ु न कनि ऐं तंहिंखां सवाइ ॿारनि ॿिन्ही खे सपोर्ट कनि, उन्हनि खे प्रोत्साहित कनि ऐं इहे जेका चवणी आहे न कि धीअरूं बोझ न आहिनि पर देश जो भविष्य आहिनि। धीअरूं कॾहिं बि बोझ न हूंदियूं आहिनि, उहे देश जो भविष्य आहिनि। उहे पुटनि वांगुरु ही पंहिंजे घर खे ऐं पंहिंजे देश खे बि तमामु सुठे नमूने ऊचाईअ ते पहुचाए सघंदियूं आहिनि। हलंदे हलंदे आख़िर में असांजे ॿुधंदड़नि लाइ तव्हां छा संदेश ॾियणु चाहींदा?
0: मां इहो ई संदेश ॾियणु चाहींदसि, मुंहिंजी लाइफ में इहो ई फील कयो आहे कि हर ज़ाल खे पंहिंजे पेरनि ते ज़रूरु बीहणु खपे, छोकी इहा ई उहा शक्ति आहे जंहिंसां हुनखे आत्मविश्वास बि ईंदो, स्वतंत्रता बि फील कंदी, उहा लीडरशिप बि करे थी सघे। ही सॼियूं क्वालिटीज़ तॾहिं ईंदियूं जॾहिं उहा ख़ुदि सेल्फ डिपेंडेंट हुजे। हिकु मुंहिंजो किशोर दा जो सॉन्ग आहे, आहे त हिंदी में पर आउं इहो स्कूल में बि ज़रूरु चवंदी आहियां कि ॾाढियूं समस्याऊं ईंदियूं लेकिन तूं रुक चवंदी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। त इन गीत में जीअं लिखियलु आहे घणेई मतिलबु काटा ईंदा पथ में लेकिन तॾहिं बि पाण खे रुकणो कोन्हे। परिस्थितियूं पंहिंजे अनुकूल कोन हुयूं लेकिन हाणे धीरे धीरे अनुकूल थियनि पियूं। जेसि ताणी पाण ख़ुदि कोन चाहींदासीं तेसि ताणी कुझु बि कोन थी पाईंदो। चांद तारा केरु न खणी ईंदो तव्हां लाइ, तव्हांखे ख़ुदि ई चमकणो पवंदो।
1: तव्हां हित आया ऐं तमामु सुठे नमूने अॼु हिन विषय ते असां तव्हां खां जानकारी वरितीसीं। तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद।
2: हींअर मां ॿुधी रहिया हुआ ॻाल्हि ॿोल जालुनि लाइ शिक्षा जो महत्व। रेखा रानी जी सां ॻाल्हि ॿोल करे रही हुई प्रिया नंदवानी ऐं साथियूं ॾाढे सुठे नमूने रेखा रानी जी असांखे ॿुधायो त जॾहिं नारी शिक्षित हूंदी तॾहिं ही हूअ ख़ुदमुख़्तियार थी सघंदी, पंहिंजे परिवार जी सार संभाल, हिकु सुठे समाज जो निर्माण ऐं हिकु सुठे राष्ट्र जो निर्माण करे सघंदी। साथियूं हर साल 12 जुलाई ते आलमी उमेद जो ॾींहुं माना आशा दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं सॼी दुनिया में माण्हुनि ऐं क़ौमुनि लाइ अमन ऐं गॾियल तरक़ीअ खे वधाइण लाइ रहनुमाई कंदड़ असुल तौर ते कमु करे थो। संयुक्त राष्ट्र पारां शुरू कयल ही ख़ासि क़दम माण्हुनि खे हिकु बहितर, वधीक समावेश ऐं शांती वारी दुनिया ठाहिण लाइ मुतासिर करे थो। हिन ॾींहं खे मल्हाइण जी अहमियत इहा आहे कि ही ॾींहुं माण्हुनि खे मुश्किल परिस्थितियुनि जो मुक़ाबिलो करण लाइ मानसिक रूप में लचीलो ठाहिण ऐं हिक ॿिए जो समर्पण करण लाइ हिमथाए थो। ऐं हिन ॼाण सां गॾु ही अॼु जो असांजो सिंधी कार्यक्रम इते ही पूरो थो थिए। वरी अवां सां गॾिजाणी थींदी ईंदड़ मंगल ते ईअं ई ॾींहं में 12:10 ते। तेसी ताईं खिलंदा रहो, मुश्किंदा रहो ऐं ॾियो अनुष्का रंगानीअ खे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगले कुछ समय तक हम आपको ले चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर में, जहां गीत केवल सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे, जहां शब्दों में कविता बसती थी, धुनों में आत्मीयता और स्वरों में जीवन की मिठास घुली होती थी। तो आइए इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं। पहला गीत जब याद किसी की आती है फिल्म का है। इस मधुर रचना को स्वरों से सजाया स्वर सम्राट महेंद्र कपूर ने। भावपूर्ण बोल है राजा मेहंदी अली खां के और बेहतरीन संगीत मदन मोहन साहब का। तो सुनते हैं, अरे ओ शोक कलियो मुस्कुरा देना वो जब आए।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जो शब्दों से कम और एहसासों से ज़्यादा संवाद करते हैं। उन्हें सुनते हुए लगता है जैसे मन स्वयं अपनी बात कह रहा हो, बिना किसी शोर, बिना किसी आग्रह के। यही सादगी और यही गहराई उन्हें कालजयी बना देती है। ऐसे गीत, एक ऐसा ही एक अनुपम गीत

आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म अनुपमा का ये सदाबहार नगमा है। अपनी संवेदनशील अभिव्यक्ति और मधुर धुन के लिए आज भी उतना ही प्रिय है। इसे स्वर दिया है भारत रत्न लता मंगेशकर ने और संगीत से संवारा है हेमंत कुमार ने और बोल कैफी आजमी के हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, अरे ऐसे ही बातें होती हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह

0: अपना विज्ञापन पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, पुराने फिल्मी गीतों की एक विशेषता ये भी होती कि वे मन की सबसे सूक्ष्म भावनाओं को भी बड़ी सहजता से स्वर दे देते हैं। विरह हो, प्रतीक्षा हो या मन की अनकही कसक, हर एहसास को संगीत और शब्दों में इतनी खूबसूरती से पिरोया जाता है कि वे गीत समय की कसौटी पर आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं। तो इन्हीं भावनाओं को बड़ी कोमलता से अभिव्यक्त करता है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है आम्रपाली, लता मंगेशकर का स्वर है, संगीत है शंकर जयकिशन का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है और सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, ओपी नैयर का मदमस्त संगीत है जो कहता है कि जाना तो है हमें पर जाता कहाँ है दीवाने।

0: इस गीत के साथ फिर से गीत का ये सफर यही रुकता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के बजने को है एक और अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 3 देशों की यात्रा के 3rd और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। आज से जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। नए टर्मिनल के संचालन के पहले दिन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहली उड़ान के यात्री को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इससे पहले बेंगलुरु से जोधपुर आई पहली फ्लाइट

0: सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के साथ केक काटकर उत्सव भी मनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर आने और यहां से जाने वाले प्रत्येक यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहर की समृद्ध संस्कृति और आत्मीयता का अनुभव होगा। ये टर्मिनल जोधपुर की नई पहचान और बढ़ती विकास यात्रा का मजबूत प्रतीक बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। ये योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो पारियों में ली जाएंगी। आज पहले दिन पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी। ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की हैं। राजस्थान टेक्सटाइल और अपेरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। साथ ही 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा तथा 4 एस्पिरेशनल जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि ये सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रही। मौसम विभाग ने आज करीब 15 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बादलों के छटने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम में 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एक FM 101.6 MHz पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति बिंदु शर्मा और ज्योति वर्मा की है।

जिंदगी की उलझनों में मुस्कुराना सीखिए, ना उम्मीदियों के दौर में भी आस जगाना सीखिए। एक छोटा सा ही दिया सही उम्मीद का, मगर उसे हर अंधेरे कोने में जलाना सीखिए। ऐसी

0: की उम्मीद के साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और कई उपयोगी चर्चाओं, जानकारियों और गीत संगीत के साथ आज आपके साथ हैं मैं ज्योति वर्मा
1: और मैं बिंदु शर्मा
0: और हम सभी के दोनों की ओर से आप सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार सखियों, नमस्कार के साथ में एक सुंदर सी बात। ज्योति, आज सुबह से ही हवाओं की कुछ अलग ही जादू बिखेर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हर किरण खुद नया कन्या का हौसला दे रही है।
0: बिल्कुल सही कहा बिंदु, क्योंकि आज का दिन ही इतना खास है कि जो कि है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ होप। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण हमेशा उम्मीद लेकर आती है, है ना?
1: वहाँ क्या बात कही ज्योति, उम्मीदों से सजी एक नई सुबह है। रास्ते पर बिखरी खुशियों की जगह है। हार मत मानना ऐ मुसाफिर, तेरी हर कोशिश में छुपा कामयाबी का सबब है। आज का दिन उन सभी लोगों को सलाम करने का है जिन्होंने मुश्किलों से मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।
0: सच में बिंदु, हर जिंदगी जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि गिराने की कोशिश करती है, तो ये आशा ही तो होती है जो हमें दोबारा खड़े होने और मुस्कुराने की ताकत देती है। वैसे तुम बताओ, जब कभी तुम उदास होती हो तो तुम्हारी उम्मीद की किरण क्या होती है?
1: मेरे लिए तो हमारे श्रोताओं का प्यार, एक कप कड़क चाय ही अच्छा। काफी है। यदि सच कहूं तो किसी की छोटी सी मदद या किसी अजनबी की मुस्कुराहट भी दिल में उम्मीद जगा देती है कि दुनिया अभी भी बहुत खूबसूरत है।
0: वाह, बिल्कुल ये सही कह रही हो। और आज के इस खास दिन पर तो हमारी बहनें जो हमें सुन रही हैं, हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई सपना टूट गया है या कोई काम अटक गया है तो निराश मत होइए। ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा उससे अच्छा रास्ता दिखाते हैं और वो रास्ता आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, आज इस आशा दिवस पर हम सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम खुद आशान्वित रहेंगे बल्कि किसी और के बुझते हुए दिए में उम्मीद का तेल भी हम लाएंगे। किसी निराश चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी हम लाएंगे।
0: क्या बात कही बिंदु, तुमने यही उम्मीद तो मन में जीत की लौ जगाती है। तभी तो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हमारा मन अगर सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा तो मन में आशाएं होंगी और छोटी छोटी जो असफलताओं से हम हार नहीं मान सकेंगे, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। मुझे अपनी कविता याद आ रही है, मैंने बहुत पहले लिखी थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं सुना देती हूँ। इसी आशा पर मैंने लिखी थी कि हर शाम ढलने से पहले चिड़ियों का गुंजन कह जाता है, उदास न हो सरताज राष्ट्र की, सुबह तो फिर आनी है, उगेंगे रक्तिम भानु फिर, रक्तिम लालिमा छानी है। ये तो थी कविता की बात। और अब हमारी सखियों को ले चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर।
0: बिल्कुल

0: सखिया, मानसून की फुहारों में ऐसा लग रहा है ना चारों तरफ थोड़ी हरियाली सी बिखेर दी है, क्यों बिंदु? लेकिन जो उमस और नमी है ना, ये हमारे कुछ बीमारियों की दस्तक देने वाली सालक बनती जा रही है ना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इस मानसून के साथ आती जा रही हैं, और उसमें एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, वो है आँखों में इन्फेक्शन की, इसको आई फ्लू भी कहते हैं, क्यों बंधु?
1: बिल्कुल सही ज्योति, इन दिनों हम देख रहे हैं कि घरों में, स्कूलों में या हर जगह जो देखते हैं बच्चों की या बड़ों की आंखों में जलन की शिकायत है, या फिर ये जो इन्फेक्शन है बढ़ रहा है, ऐसे आंखों का आना भी कहते हैं, ये इस मौसम में आना तो आम बात है।
0: और इसका संक्रमण भी तेजी से फैलता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसे छूने तक से भी फैल जाता है ये संक्रमण, इसलिए थोड़ी सी सावधानी तो हमको रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल सखियों, बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस को पनपने का मौका मिलता है, और ये इन्फेक्शन खास तौर पर संक्रमित व्यक्ति की आंखों को छूने से और उसके तौलिए या रुमाल या कोई भी उसकी जो इस्तेमाल की चीज होती है ना, उसको काम में लेने से ये बहुत जल्दी से फैल जाता है।
1: सही कहा ज्योति, ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे या यूं कहें कि नजदीक जाकर अगर बातचीत भी करते हैं तो ये फैल जाता है, ऐसा हमने देखा है। ये डराने की बात नहीं है सखियों, को थोड़ी सी सावधानी की बात है, ताकि सावधानी बरतें।
0: और इसमें सबसे जरूरी पता है क्या है? हाथ धोना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि गंदे हाथ अगर आंखों को लगते हैं ना, तो वो इन्फेक्शन और फैलाते हैं और इसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो इसलिए आंखों को बार बार छूना भी नहीं चाहिए, और घर में किसी को अगर हो जाता है तो उसका तौलिया, साबुन, तकिया वगैरह जो है ना, वो उससे कहना चाहिए कि अलग रखें, ताकि परिवार में और लोगों को ना फैले। और इसके अलावा जो हमारी सखियां मेकअप वगैरह करती है ना ऐसे समय में, तो अगर वो काजल वगैरह भी यूज करती है अपना मेकअप के लिए आंखों का,
1: तो
0: वो किसी के साथ साझा नहीं करे, नहीं तो इन्फेक्शन उनमें जल्दी से फैल जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा, अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या घर पर ही कुछ राहत मिल सकती है।
0: बिल्कुल, अगर देखना चाहिए कि अगर आंखें बहुत लाल हो रही हैं और उसमें अगर पानी आ रहा है, चिपचिपा सा हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कई बार बिंदु हमारी सखियां क्या करती हैं कि खुद जाके मेडिकल स्टोर पे और कोई आई ड्रॉप खरीद लेती हैं और उसे डाल देती कि इससे ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आंखों की स्थिति देखे बिना जब आई ड्रॉप डाली जाती है तो उससे आंखों को नुकसान हो जाता है। तो सखियों को सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जो आई ड्रॉप बताए वो ही डालें। अपने मन से तो सिर्फ एक ही उपाय कर सकते हैं, जैसे अपनी आंखों को साफ रखना, गुनगुने पानी में जैसे रुई या कोई नरम कपड़ा भिगो कर आंखें पोंछ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे जो बहनें हैं वो आमतौर पर छोटी छोटी इन चीजों को बहुत छोटा मानती है, ये नॉर्मली मानते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि खूबसूरत दुनिया, ये नजारे, ये मंजर इन्हीं आंखों से देखा जाता है। इसके साथ बिल्कुल भी रियायत ना बरते हैं कि हाँ कैसे, मतलब हम छोड़ सकते हैं, आंखों का पूरा ख्याल रखें। ये बहुत जरूरी जानकारी जो आपने दी, कि अगर इसके साथ एक चीज और जोड़ती है कि चश्मा लगाने पर भी थोड़ा हो सकता है आराम।
0: वो काला चश्मा लगा ले ना अगर, तो काला चश्मा पहनने से क्या होगा कि आंखों पे एक तो चमक नहीं पड़ेगी, धूल मिट्टी और रोशनी की चमक पड़ने से जो दर्द होता है वो दर्द में आराम मिलेगा। और एक ये होता है कि जब कहते हैं ना आंख आना एक दूसरे को देखने से आ जाती है, तो ये जो है काला चश्मा लगा होगा तो कोई हमारी आंख देख ही नहीं पाएगा, इंफेक्शन।
1: इसमें ये भी है कि आजकल सभी बहनें वर्किंग वुमेन है लगभग, तो उनको अपने काम पर भी जाना पड़ता है, अगर आंखें आ गई तो ऐसा तो नहीं कि हम छुट्टी लेकर कितने दिन बैठेंगे ना, और काम

0: जरूरी भी होता है, तो चश्मा लगाकर हम अपना काम भी कर सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारी प्यारी सखियों को थोड़ी सी सलाह है कि इससे डरे नहीं, थोड़ी सी सावधानी बरतें। बरतने के साथ साथ में बरसते हुए मानसून में अपनी आंखों का ख्याल तो रखना ही चाहिए, पर सुहावने मौसम का आनंद लेना, बरसात की फुहारों का आनंद लेना, तो लीजिए चाय की चुस्कियों के साथ साथ आप अपनी बालकनी या खिड़की में रिमझिम फुहारों का आनंद लीजिए हमारे इस बरसते पानी के गीत के साथ में,
1: आशाओं के साथ, है ना। बरस पानी के बरसने की आशाओं के साथ।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: बहनों, हमारे समाज में कई कुरीतियां व्याप्त हैं जो कि हमारे सामाजिक विकास में बाधक बनती हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना है कि ऐसी कुरीतियों को हम समाप्त करके नई दिशाओं की ओर बढ़ें। ऐसे में हम महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए जानते हैं इस भूमिका के बारे में इस वार्ता के द्वारा, जिसका विषय है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महिलाओं की भूमिका। और वार्ताकार है श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव।
3: सामाजिक कुरीतियों के निवारण में महिलाओं का योगदान। हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम भूमिका, चाहे वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, सास एवं अन्य कोई भी हो, उन सबको निभाने में निपुण होते हैं के बाद भी उनकी योग्यता कम मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है, परंतु जैसे जैसे हम वैदिक काल में मध्य और आधुनिक काल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे भारत में निम्न होती महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी से ज्यादा जटिल होती है। इन सभी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते महिलाओं में समाज में फैली कुरूतियों से लड़ने की हिम्मत जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी। परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। महिला इन कुरूतियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को मानने के लिए बाध्य थी। इन मान्यताओं में प्रमुख थी बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पति की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना, साध्वी वाला जीवन व्यतीत करना तथा अनेक कष्ट सहना इत्यादि। उस समय निम्न महिलाओं के कार्य भी उल्लेखनीय है, जिसमें पंडित रामाबाई सरस्वती, सरला देवी चौधरानी, मुक्ताबाई एवं ताराबाई शिंदे, सरोजिनी नायडू आदि महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग समाज में फैली हुई कुरूतियों को दूर करने में दिया। पुणे से पंडित रामाबाई ने मुंबई महाप्रांत के विभिन्न शहरों में अनेक महिला संस्थानों की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं के लिए, युवा विधवा स्त्रियों के लिए रोजगार और शिक्षा की दृष्टि से शारदा सदन की शुरुआत की। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की शुरुआत की। मुक्ताबाई और ताराबाई शिंदे ने निम्न जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी सुधार प्रस्तुत की। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद संभाला। उन्होंने सुधारों के खिलाफत का मुद्दा उठाकर कूर रोलेक्ट एक्ट एवं सत्याग्रह पर अभियान चलाए। भारत की कई बुद्धिजीवी मेघावी महिलाओं ने बड़े बड़े समाज सुधारकों और आम जनता के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही स्थानीय महिलाओं के साथ शिक्षा, जीवकोपार्जन, नीति निर्माण पर जोर दिया। इन महिलाओं के अतिरिक्त विदेशी मूल की महिलाओं में जैसे एनी बेसेंट और सिस्टर निवेदिता ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं ने गांव के स्तर पर महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, मारपीट का विरोध किया जा सके और पितृसत्ता समाज की चुनौती दी जा सके।

0: पहुंच रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: निजी सखियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ आशा, उम्मीद, खुशी और खुशहाली के साथ में, क्योंकि हम कुछ ऐसी योजनाएं, ऐसा सामान, साजो सामान आपके लिए लेके ही आते हैं ताकि आप उसका पूरा फायदा उठाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सके। एक ऐसी योजना जो हमारे घर की बेटियों को, खास तौर पर उनसे जुड़ा हुआ वह योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना।
1: अच्छा,
0: अक्सर हम सखियां आपस में चर्चा करते हैं कि अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बचत कैसे और क्या करें कि बचत हो जाए।
1: बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है आपने कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये शानदार योजना शुरू करी है।
0: सच में यह योजना बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सखियों, अगर आप अभी भी इस योजना के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं तो आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हम बताएं कि यह खाता कौन खुलवा सकता है।
1: ये बहुत ही सरल बात है कि अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसके नाम से खाता खुलवा सकती हैं। आप इसे किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में भी जाकर खुलवा सकते
0: जैसी सुविधा हो। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस योजना की लगी वो है कि इसका निवेश, क्या इसमें बहुत बड़ी राशि का निवेश की जरूरत होती है?
1: नहीं, इसकी यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप मात्र 250 रुपए से इस खाते की शुरुआत कर सकते हैं और साल भर में आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि बचत आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कर सकती हैं।
0: वाह ज्योति, यानी कि हम कम कमाई वाले परिवार भी बड़ी आसानी से अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यह भी स्पष्ट कर देते हैं, इस पर ब्याज दर कैसी रहती है?
1: अरे, इस सुकन्या समृद्धि योजना पे मिलने वाली जो ब्याज दरें हैं वो अन्य जो सामान्य बचत योजना है ना, जैसे बैंक FD वगैरह है, उनके मुकाबले बहुत आकर्षक है।
0: अच्छा?
1: और साथ ही ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है क्योंकि सरकार द्वारा समर्थित है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री भी होती है।
0: वाह क्या बात है, बड़ी मजेदार है ये योजना। मैं जो है ना, अक्सर मेरे मन में ये सवाल आता है कि यह तो बहुत ही बेहतरीन, फायदे वाली है, सुरक्षित भी है और टैक्स फ्री भी है, तो हमारी सखियों के मन में अक्सर ये सवाल आता ही है कि क्या हम इसे बीच में तोड़वा सकते हैं।
1: ये जो ऐसी योजना है कि लंबी अवधि की जो जरूरतें है ना उनको पूरा करने के लिए ये योजना है। और ये खाता तब मैच्योर होता है जब बेटी 21 साल की हो जाए।
0: पैसा कोई छेड़ ही नहीं सकता,
1: पहले नहीं ले सकते। और अगर बेटी की कभी है ना उच्च शिक्षा की जरूरत होती कई बार, तो अगर वो बेटी 18 साल की हो गई है और तो फिर उसकी शिक्षा के लिए भी हम उसके भविष्य की कुछ और जरूरतों के लिए ये राशि निकाल सकते हैं। और शादी अगर होती है तो उसके लिए भी ये पैसा काम आ सकता है।
0: यानी यह योजना बेटी के सपनों को पंख देने के लिए ही बनी है। तो मेरी प्यारी सखियों, अगर आप भी अपनी बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना रखती हैं वैसे तो आज ही इस योजना को नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर जरूर करवाएं और जो भी जानकारी अगर रह गई है तो वहां से पूरी करें।
1: और ये अपनी बेटी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही इस समय का सबसे बड़ा उपहार है।

क्योंकि उम्मीद है कि ये आप अपनी बेटी के लिए योजना जरूर लेंगे। और जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि हम बेटियों के पंखों को उड़ान देना चाहते हैं, वो उड़े पंछियों की तरह जीवन की ऊंचाइयों को छुए और कहे कुछ इस तरह।

0: बहुत कुछ करते हैं करने के लिए, तो हम बेटों के लिए भी बेटियों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ में कुछ बातें और भी बतानी है, जिसे कहते हैं गुड टच या बैड टच। क्यों ज्योति, सही कह रही?
1: बहुत गहरी बात कही है तुमने। अगर बच्चों को हम बाहर भेजते समय ये तो सिखाते हैं कि हम आप अपने अजनबी से बात मत करना और कहीं ढंग से गाड़ी चलाना ये सब, लेकिन हमें जिस बात पर अभी बहनों को बताना चाहिए अपने बच्चों को, वो है गुड टच और बैड टच।
0: बिल्कुल बिल्कुल गंभीर विषय है। बहुत सी बहनों को लगता है कि बातें हम बच्चों के साथ कैसे करें, मन में डर पैदा होगा या जो भी है उसको किस प्रकार से उनके सामने रखें, है ना?
1: बिल्कुल सही कह रही हूँ। और उन्हें बताना होता है कि हम उनका जो शरीर है वो सिर्फ उनका है और उन्हें एक सुरक्षा कवच देना है। तो हमारी बहनें सोच रही होंगी कि शुरुआत कैसे करें एक माँ के तौर पर, जैसे कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत है।
0: सबसे पहले तो बच्चों को उनके अंगों के बारे में सही भाषा सिखाएं, फिर उन्हें सेफ सर्कल के बारे में बताएं, जैसे अगर कोई भी उन्हें छुए या बुरा अजीब डरा हुआ महसूस हो तो वह बैड टच है। उन्हें सिखाएं कि अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत ना बोलें और वहां से हटें और अपने पेरेंट्स को जो भी आपके पास में है उनको लाकर बताएं, इसमें डरने की या किसी संकोच की आवश्यकता नहीं है।
1: और ये जो ना बोलना है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे बड़ों का सम्मान करने के चक्कर में आ जाते हैं, तो इसलिए उन्हें सिखाना जरूरी है कि कभी कभी बड़े लोग भी गलत व्यवहार कर सकते हैं।
0: सच क्या है ये बच्चों को जानना चाहिए। सच मतलब बड़ा हो या छोटा आपको सही का साथ देना है, ऐसी बातें समझ में आनी चाहिए। यदि बच्चों को विश्वास भी दिलाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम हमें आके तुरंत बताओ और हम गुस्सा नहीं करेंगे, और कभी लगे ना कि बच्चा सहमा हुआ है कुछ बोल नहीं रहा है थोड़ा उसको टाइम दो और बताओ, ये स्पष्ट करें कि सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है हमारे खेल, ये खेल खेल में भी समझाया जा सकता है, सामान्य बातचीत में भी इसको समझाया जा सकता है कि आप शून्य स्थान पर ना जाएं और एकदम सुरक्षित रहें अपने सखियों के साथ में, इस प्रकार की बातचीत करनी चाहिए।
1: तो ये बहुत जरूरी विषय है जिस पर हमको बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। और चलते चलते बस हम इतना ही कहेंगे कि जिस बात पे हमने शुरुआत की थी अपनी आशाओं का दामन छांवे रखें।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बात
1: साथ हम इजाजत चाहेंगे ज्योति वर्मा
0: और बिंदु
1: शर्मा, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के बजने वाले हैं दो और अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज।
3: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said, the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani

0: prescribed leave to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of Provident Fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Fairey. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a 6-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter the semi-finals. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर

0: चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की यह मिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति

0: पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू कोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज

0: वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफर यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं कैसे गीत से, जिसमें इंतजार की कसक है, यादों की महक है और प्रेम की गहराई भी। फिल्म एतबार का ये कालजयी नगमा है, आज भी अपनी संवेदनशील अभिव्यक्ति के कारण उतना ही प्रिय है। इस गीत को अपनी आत्मीय आवाजों से सजाया है भूपेंद्र और आशा भोसले ने, और भावपूर्ण बोल हैं हसन कमाल के, मधुर संगीत बप्पी लहड़ी का। तो सुनते हैं। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि दिल बेकरार आज भी है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है गुलजार की लेखनी का एक गजब का उदाहरण। उनकी लेखनी की विशेषता भी है कि वे सीधे कुछ नहीं कहते, बल्कि एहसासों को बिंबों और प्रतीकों में ढाल देते हैं। और जब उन शब्दों को राहुल देव बर्मन की धुन मिल जाए और आशा भोंसले की आवाज, तो फिर क्या कहने हो? वो कालजयी रचना बन ही जाती है। तो फिल्म इजाजत का जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, यह गीत प्रेम को किसी एक पल की घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे, हौले हौले, कतरा कतरा संचित होने वाली अनुभूति के तरह प्रस्तुत करता है। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, ये बल्कि गीत ही नहीं, रिश्तों की गहराई और जीवन के सूक्ष्म एहसासों का एक सुंदर रूपक है। गीत के अंतरे भी उतने ही बहुत ही प्यारे हैं, अर्थपूर्ण हैं, हर बार सुनने पर एक नया भाव छोड़ जाते हैं। तो आइए शब्द संगीत और गायकी के इस अद्भुत संगम का आनंद लेते हैं। सुनिए फिल्म इजाजत का ये कालजयी रचना, कतरा कतरा मिलती है।

कमल का गीत था, मन कर रहा था कि इस रहने दो के बाद में फिर से एक और अंतर आ जाए और कतरा कतरा हमें आनंद मिलता ही रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और प्यारे से गीत की तरफ। श्रोताओं, रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उसमें रूठना भी होता है और मनाना भी, कभी हल्की सी नाराजगी, कभी प्यार भरी शिकायत, और फिर उसी मुस्कान के साथ लौट आता है अपनापन। तो हिंदी फिल्मों के अनेक गीतों में इन नाजुक भावनाओं को बड़ी सहजता से शुरू में पिरोया गया है। इतनी चुलबुले और स्नेहिल एहसासों से सजा एक और हमारा गीत है। अगला फिल्म का नाम है जवानी और आवाज़ें हैं आशा भोंसले और अमित कुमार की। आशा भोंसले का ये तीसरा गीत हो रहा है और इत्तेफाक से आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी है। तो सुनते हैं आशा भोंसले और अमित कुमार के स्वर में, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम।

और अब समय है आज के इस संगीत में सफर के अंतिम पड़ाव का। तो विदा लेने से पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने अपने समय में फिल्म संगीत की धुनों को एक अलग ही अंदाज में मोड़ दिया। अपनी आधुनिक लय, जोशीले संगीत और अलग अंदाज की गायकी के कारण ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। फिल्म कुर्बानी का ये सुपरहिट गीत है, ताजगी और ऊर्जा के लिए आज भी याद है सभी को। इंदिवर ने इसे लिखा, बिड्डू का मदमस्त संगीत है और सुनते हैं बिना समय गवाए कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।

इस गीत को कुछ खास बनाती है इसमें जो गायिका है नाजिया हसन, तो सुनते हैं नाजिया हसन को, आप जैसा कोई।

नाज़िया हसन के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज के इन गीतों ने आपके मन को किसी मीठी स्मृति को फिर से ताज़ा किया होगा। संगीत को जो कह सकते हैं कि दूरियां मिटाने वाला एक जो गुण है वो इन सभी गीतों में आपको मिला होगा और आप अपने स्मृति में इसे संजोए रखेंगे। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। मीडियम वेव पर हमारी अगली सभा संध्या 5 बजे पुनः प्रारंभ होगी।

0: 215 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। इस सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के

0: मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन आंदोलन में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला डबल्स और पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में शाम 5:30 बजे चीन की गुआ वानयू और फ्रांस की क्रिस्टलिना मार्डोनोविका की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिन्नर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त सुखमनी।
1: और मैं हूं शारदा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पर्यावरण से ही नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। तो विषय है कैच द रेन, यानी बारिश की हर बूंद को सहेजने का संकल्प।
0: शारदा, बारिश का मौसम आते ही ना मन एकदम खुश हो जाता है।
1: हाँ,
0: कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू, कहीं बच्चों की कागज की नाव, तो कहीं किसान के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस बारिश का हम इतने उत्साह से स्वागत करते हैं, उसी का अधिकांश पानी कुछ ही घंटों में बहकर व्यर्थ हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा सुखमणी तुमने। एक तरफ बरसात में सड़कें और नालियां पानी से भर जाती हैं और दूसरी तरफ कुछ ही महीनों बाद वही क्षेत्र पानी की कमी से जूझने लगता है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समस्या बारिश की कमी नहीं बल्कि बारिश के पानी को सहेजने की कमी है।
0: वैसे शारदा, यही सोच हमें कैच द रेन अभियान तक लेकर जाती है। इसका संदेश बहुत सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली है। संदेश ये है कि जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, उस पानी को हमेशा संजोएं।
1: बिल्कुल, यानी बारिश का पानी बहकर नालों में जाने के बजाय जमीन के भीतर पहुंचे, तालाबों में इकट्ठा हो, कुओं को जीवन दे और भविष्य के लिए सुरक्षित रहे।
0: शारदा, आज भारत के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई गांवों में गर्मियों के दिनों में लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। शहरों में भी पानी की सप्लाई सीमित होती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा कारण है पानी का बढ़ता हुआ उपयोग और प्राकृतिक जल स्रोत का कम होता संरक्षण। पहले गांवों में तालाब, बावड़ियां और कुएं केवल पानी के स्रोत नहीं थे बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का हिस्सा थे। समय के साथ हमने इनका महत्व कम कर दिया है।
0: बिल्कुल, लेकिन शारदा अच्छी बात यह है कि यदि गलती इंसानों ने की है ना, तो उसका समाधान भी इंसान नहीं निकाल रहे हैं।
1: सही का वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा ही एक समाधान है। इसमें घरों की छतों, स्कूलों, कार्यालयों और अन्य भवनों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टैंक में संग्रहित किया जाता है या जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है ताकि भूजल स्तर बढ़ सके।
0: और शारदा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता ही नहीं होती। थोड़ी सी योजना और जागरूकता से हर व्यक्ति अब इसमें भूमिका निभा सकता है।
1: सुखमणी, मुझे एक कहावत याद आ रही है, बूंद बूंद से सागर भरता है।
0: बिल्कुल, और यही कहावत जल संरक्षण पर पूरी तरह लागू होती है। यदि हर परिवार प्रतिदिन थोड़ा सा पानी बचाए, हर संस्था वर्षा जल संचयन अपनाए और हर नागरिक पानी की बर्बादी रोकने का संकल्प ले, तो करोड़ों

0: हीटर पानी बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, युवाओं की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। आज का युवा केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। सोशल मीडिया हो, कॉलेज हो या मोहल्ला, हर जगह जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जा सकता है।
0: वैसे शारदा, हम अपने घर में भी छोटी छोटी आदतें विकसित कर सकते हैं, जैसे ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ना, गाड़ी धोने के लिए पाइप की बजाय बाल्टी का उपयोग करना, पौधों में आवश्यकता अनुसार पानी देना और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि बच्चों को शुरुआत से ही पानी का महत्व समझाया जाए तो आने वाली पीढ़ी स्वयं जल संरक्षण को अपनी आदत बना लेगी।
0: वैसे जल केवल हमारी आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अमूल्य उपहार भी है। यदि हम इसे आज नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें शायद कभी माफ ना करें।
1: सही कहा सुखमणि, हमें यह समझना होगा कि जल संरक्षण केवल एक अभियान नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
0: एक छोटी सी कल्पना करो शारदा, यदि इस वर्ष बरसने वाली हर बूंद को सही दिशा मिल जाए तो शायद अगले वर्ष किसी किसान की फसल सूखे से नष्ट नहीं होगी, किसी गांव में पानी का टैंकर नहीं भेजना पड़ेगा और किसी बच्चे को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, यही तो कैच द रेन का उद्देश्य है, आज की बारिश को कल की सुरक्षा में बदलना।
0: दोस्तों, बारिश की हर बूंद प्रकृति का संदेश लेकर आती है। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी।
1: क्योंकि दोस्तों, आज बचाया गया पानी ही आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, जल है तो जीवन है और जीवन है तो भविष्य है।

0: दोस्तों अब समय है आपके युववाणी के फेवरेट सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जिसमें हम आपसे दो सवाल पूछेंगे। इन सवालों के जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में दिए जाएंगे।
1: तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, कैच द रेन 2026 अभियान का मुख्य विषय क्या है? मैं प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, कैच द रेन 2026 अभियान का मुख्य विषय क्या है?
0: दोस्तों आज का दूसरा सवाल है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है, जो भारत के लिए अत्यंत सामरिक महत्व रखता है। मैं सवाल दोहराती हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है, जो भारत के लिए अत्यंत सामरिक महत्व रखता है।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ है
6: मिठाई?
7: RBI कहता है
8: तरह से ही शुरुआत, बड़ो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शारदा, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं ना, जब हमें सब कुछ कठिन लगने लगता है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी फैमिली की जिम्मेदारियां, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने का संघर्ष। ऐसे समय में एक चीज हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है और वो है आशा।
3: आशा, आशा दोस्तों केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वह विश्वास है कि आज की कठिनाइयां हमेशा नहीं रहेंगी और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। यही विश्वास हमें हर सुबह नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
2: और शारदा, इसी संदेश को दुनिया भर में फैलाने के उद्देश्य से आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को कम कर सकता है।
3: सही कहा सुखमणि, हमने देखा है कि पिछले साल कुछ वर्षों में लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया। ऐसे समय में परिवार, मित्रों और समाज का सहयोग, साथ ही सकारात्मक सोच ने लाखों लोगों को फिर से खड़ा होने के साहस दिया है।
2: और दोस्तों, युवाओं के लिए तो आशा और भी महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देरी से मिलती है, या करियर की शुरुआत उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हमारी मंजिल खत्म कर दें।
3: बिल्कुल दोस्तों, हर सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। जो लोग उम्मीद बनाए रखते हैं, वही कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ते रहते हैं।
2: और शारदा, आशा का अर्थ केवल स्वयं सकारात्मक रहना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाना है। किसी निराश व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, उसकी हौसला अफजाई करना या उसकी छोटी सी मदद कर देना भी आशा का संदेश फैलाना है।
3: बिल्कुल सही कहा सुखमणि, तुमने कहा भी गया है ना कि उम्मीद वह रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है।
2: बिल्कुल शारदा, हमें अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतें जरूर अपनानी चाहिए, अपने

0: लक्ष्य तय करना, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना। ये आदतें हमारे भीतर आशा और आत्मविश्वास दोनों को ही मजबूत बनाती हैं।
1: और यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो चुपचाप अकेले संघर्ष करने के बजाय अपने प्रियजनों से बात करें। कई बार बातचीत ही नई उम्मीद की शुरुआत बन जाती है।
0: और दोस्तों, याद रखिए कि आशा कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन ये हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस जरूर देती है।
1: क्योंकि जब उम्मीद जीवित रहती है तब सपने भी जीवित रहते हैं और जुनून बना रहता है।

0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़, जन जन तक।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सुखमणि, क्या तुम भारत की एक ऐसी जगह जानती हो जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री जीवन और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है?
2: बिल्कुल शारदा, मैं जानती हूँ। तुम बात कर रही हो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं, जिनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं।
1: बिल्कुल, अंडमान और निकोबार अपनी साफ नीली समुद्री लहरों, सफेद रेत वाले समुद्र तटों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
2: बिल्कुल शारदा, अगर इतिहास की बात करें तो ये स्थान भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है।
1: सही का, और यही वजह है कि अंडमान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि देशभक्ति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आज भी हजारों पर्यटक सेल्यूलर जेल का लाइट एंड साउंड शो देखने पहुँचते हैं, जो इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है।
2: प्राकृतिक सुंदरता की अगर बात करें शारदा, तो यहाँ के राधा नगर बीच को एशिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सी वॉकिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज भी काफी लोकप्रिय है।
1: बिल्कुल, इन गतिविधियों के दौरान पर्यटक समुद्र के भीतर मौजूद रंग बिरंगी कोरल रीफ्स, तरह तरह की मछलियाँ और अन्य समुद्र जीवों को बहुत करीबी से देखते हैं। यह अनुभव सचमुच यादगार होता है।
2: अंडमान और निकोबार जैव विविधता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कई दुर्लभ पौधे, पक्षी और समुद्री जीव पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ भी रहती हैं, जो अपने पारंपरिक जीवन शैली को आज भी सुरक्षित बनाए हुए हैं।
1: बिल्कुल, इन जनजातियों की संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसीलिए सरकार ने उनके संरक्षण के लिए कई विशेष नियम बनाए हैं और आम लोगों के प्रवेश पर भी कुछ स्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
2: आज अंडमान और निकोबार पर्यटन, पर्यावरण और इतिहास तीनों का ही एक सुंदर संगम बन चुका है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ भारत के गौरवशाली इतिहास को भी महसूस करता है।
1: सही का, क्योंकि जहाँ एक ओर समुद्र की अनंत गहराई है, वहीं दूसरी ओर इतिहास की न मिटने वाली यादें, और यही अनोखा मेल अंडमान और निकोबार को भारत के सबसे खास पर्यटन स्थलों में

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सुखमणि, आजकल लोग अपने घरों में तरह तरह के सजावटी पौधे लगाते हैं, लेकिन अगर वही पौधे घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो तो बात ही कुछ और हो ना।
1: बिल्कुल शारदा, तुम बात कर रही हो औषधीय पौधों की। भारत में सदियों से आयुर्वेद में ऐसे कई पौधों का उपयोग किया जाता रहा है जिनमें प्राकृतिक और औषधीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय, पुदीना और अश्वगंधा जैसे पौधे इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये पौधे न केवल आसानी से लगाए जा सकते हैं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी उपयोगी माने जाते हैं।
1: जैसे तुलसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है, वहीं एलोवेरा का उपयोग त्वचा और बालों की देखभाल के साथ साथ कई घरेलू उपयोगों में भी किया जाता है।
0: और इसी तरह नीम अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, जबकि पुदीना पाचन से जुड़ी समस्याओं में उपयोगी माना जाता है।
1: बिल्कुल शारदा, औषधीय पौधों का एक और बड़ा लाभ ये है कि ये वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखने में मदद करते हैं। हरियाली बढ़ती है, हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है और आसपास का वातावरण भी ताजगी भरा महसूस होता है।
0: सही कहा सुखमणी तुमने, आज के समय में जब लोग प्राकृतिक जीवन शैली की ओर फिर से बढ़ रहे हैं, तब घरों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर औषधीय पौधे लगाने की पहल भी बढ़ रही है।
1: हालांकि ये भी जरूरी है शारदा कि किसी भी औषधीय पौधे का

0: योग डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही किया जाए। केवल घरेलू जानकारी के आधार पर किसी पौधे को दवा की तरह इस्तेमाल करना उचित नहीं है।
1: बिल्कुल। और अगर हर परिवार अपने घर या आसपास कम से कम एक दो औषधीय पौधे लगाए तो इससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि लोगों में प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल शारदा, छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। एक पौधा लगाना से केवल प्रकृति पर्यावरण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य मिल सकता है।
1: तो दोस्तों, अपने आसपास अधिक से अधिक औषधीय पौधे लगाएं, अपनी उनकी देखभाल करें और प्रकृति को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।

0: तुम सुन नहीं रहे हो यार।
1: प्रेम का भी लॉज का भी आगे जरा बिल्कुल पोती दे दे जाना। प्रेम का भी लॉज का भी आगे जरा बिल्कुल पोती दे दे जाना।
2: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

0: की बात होती है ना, तो अक्सर हमारी चर्चा विंबलडन, यूनेस ओपन या फ्रेंच ओपन जैसे टूर्नामेंट्स तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टेनिस में एक ऐसी भी प्रतियोगिता है जहाँ खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल पता है रसिकमणि, हम बात कर रहे हैं डेविस कप की। दोस्तों इसे पुरुषों की टीम टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता माना जाता है। इसमें अलग अलग देशों की टीम्स मुकाबला करती हैं।
0: बिल्कुल, डेविस कप की शुरुआत वर्ष 1900 में हुई थी। इसकी शुरुआत अमेरिकी खिलाड़ी ड्वाइट एफ डेविस ने की थी और उन्हीं के नाम पे इस प्रति

0: का गर्व और जिम्मेदारी दोनों दिखाई देती है।
1: शारदा, हर मुकाबले में सिंगल्स और डबल्स दोनों तरह के मैच खेले जाते हैं। जिस टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं वही अगले दौर में पहुंचते हैं।
0: और दोस्तों, अगर बात भारत की करें तो भारतीय टीम ने भी डेविस कप में कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। भारत कई बार फाइनल तक पहुंच चुका है और देश के कई महान टेनिस खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाया है।
1: भारतीय खिलाड़ी जैसे लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने अलग अलग समय पर डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है।
0: सही कहा सुखमणि, डेविस कप सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है बल्कि यह टीम वर्क, अनुशासन और देशभक्ति की भावना का भी प्रतीक है। जब खिलाड़ी अपने देश का झंडा लेकर कोर्ट पर उतरते हैं तो मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ जाता है दोस्तों।
1: और शारदा, यही कारण है कि दुनिया भर के टेनिस प्रेमी हर साल इस प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसमें जीत केवल खिलाड़ियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जीत मानी जाती है।
0: दोस्तों, डेविस कप हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्तिगत प्रतिभा महत्वपूर्ण है लेकिन जब वही प्रतिभा टीम के साथ जुड़ती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
1: और शारदा, यही कारण है कि एक सदी से भी अधिक समय बाद आज भी डेविस कप दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टीम टेनिस प्रतियोगिताओं में अपनी खास पहचान बनाए हुए है।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों अब समय है रोजगार समाचार का।
1: दोस्तों भारतीय सेना ने 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स 2026 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत इंजीनियरिंग स्नातक पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 381 पद उपलब्ध है। चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: दोस्तों ये भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो देश की सेवा करने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित सरकारी करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। दोस्तों अब समय है क्विज के सवालों के जवाब जानने का।
1: तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल था, कैच द रेन 2026 अभियान का मुख्य विषय क्या है? तो इसका उत्तर है, जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी, समुदाय से गहरा जुड़ाव।
0: और दोस्तों आज का दूसरा सवाल था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है जो भारत के लिए अत्यंत सामरिक महत्व रखता है? इसका जवाब है मलक्का जल डमरू मध्य।
1: तो दोस्तों सुई की घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारा आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलते हैं आपके अपने ही कार्यक्रम युवाणी में ठीक शाम 5:05 पर। तब तक के लिए मैं हूँ आपकी दोस्त शारदा नैन
0: और मैं सुखमनी।
1: नमस्कार।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में कुमार मर्दुर का शास्त्रीय गायन। समय है रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

फिल्म संगीत सुनिएगा रात 9:30 पर और रात 9:15 पर। लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8:30 पर। फिल्म संगीत आप रात 8 बजे भी सुन सकते हैं और सुगम संगीत का समय है संध्या 7:45।

ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7 बजे। आज की चर्चा के विषय हैं, पहला है राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा है बीज का टीकाकरण बीजोपचार, तीसरा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा देय अनुदान योजनाएं, और चौथा है पशुओं का वर्षा जनित बीमारियों से बचाव। इन सब के साथ ग्रामीण जगत कार्यक्रम में लोकगीत और लोक भजन तो होंगे ही।

0: कंपनी के गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे। ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है।

0: ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की कलाकार है अलका याग्निक, भारत की सबसे प्रसिद्ध और सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक है। उनकी मधुर आवाज़ ने 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक फिल्म संगीत पर गहरी छाप छोड़ी। हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में धीरेंद्र शंकर याग्निक और शोभा याग्निक के घर पर ये अद्भुत गायिका जन्मी, जिनकी माता शोभा याग्निक एक शास्त्रीय गायिका थी। बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला और उनकी पहली गुरु उनकी माता थी। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता से गायन शुरू कर दिया था। लगभग 10 वर्ष की आयु में वे मुंबई आई और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें अवसर दिलाने में मदद की। शुरुआती वर्षों में उन्होंने छोटे छोटे गीत गाए, लेकिन 1988 में फिल्म तेजाब का गीत 1, 2, 3 उनकी सबसे बड़ी सफलता बना। इस गीत ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया और वे हिंदी फिल्म उद्योग की अग्रणी गायिका बन गई।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, ए आर रहमान, राजेश रोशन, आनंद मिलिन, विशाल शेखर और प्रीतम, और ये लिस्ट और भी लंबी है जिन संगीतकारों के साथ अलका याग्निक ने काम किया। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, हरिहरन और एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ हजारों गीत गाए, और कई गीत तो बिल्कुल हमेशा ही जनता की जबां पर रहते हैं। कुछ कुछ होता है ताल से ताल मिला, अगर तुम साथ हो, दिल ने ये कहा है दिल से, परदेसी परदेसी, जो अभी आपने राजा हिंदुस्तानी का गीत सुना, ओरे छोरी, लगान का गीत, गजब का है दिन।

दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, अनेक जी सिने, आईफा, स्क्रीन और अन्य संगीत पुरस्कार अलका याग्निक को मिल चुके हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने लाइव कंसर्ट के माध्यम से लोगों को अपनी आवाज़ का दीवाना बनाया हुआ है। पति नीरज कपूर और पुत्री साइशा कपूर, और गायन शैली की बात करें तो मधुर और सुरीली आवाज, ऊंचे सुरों पर उत्कृष्ट नियंत्रण, रोमांटिक भावपूर्ण शास्त्रीय आधारित गीतों में महारत हासिल है उन्हें, स्पष्ट उच्चारण और भावपूर्ण प्रस्तुति अलका याग्निक की आवाज की विशेषता है। हजारों फिल्मों और गैर फिल्मी गीतों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और कई भारतीय भाषाओं में सफल गायन किया है। 1990 और 2000 के दशक की सबसे लोकप्रिय महिला पार्श्व गायिकाओं में गिनी जाती है और कई सालों तक भारत और विदेशों में सबसे अधिक सुनी जाने वाली भारतीय गायिकाओं में शामिल रही।

अलका याग्निक का योगदान भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी मधुर आवाज, उत्कृष्ट सुर साधना और दशकों तक लगातार दिए लोकप्रिय गीतों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में स्थापित किया। हाल ही में उन्हें एक दुर्लभ बीमारी हो गई है जिससे उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। सभी प्रशंसकों ने उन्हें अपनी दुआएं भेजी है। हम भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

श्रोताओं, आरजू फिल्म के इस गीत के साथ जिसे अपनी आवाज़ दी है अलका याग्निक ने, फिल्म संगीत एक ही कलाकार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज की कलाकार थी अलका याग्निक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया, कहा सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनसेवा में समर्पित अधिकारी और कर्मचारी सुशासन का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होता है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है और प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कर्मचारी हित में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का भी पारंपरिक राजस्थानी लोक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पिछले 12 साल से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से नियमित विमान सेवाओं का संचालन होना समूचे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाले हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। और जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: गौरतलब है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लोकार्पण किया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नए न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक जिम्मेदारियों से ही न्याय की मूल भावना साकार होती है और राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
0: समारोह में सुप्रीम

0: कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा तथा पंजाब न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा में रखे गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाकर आम जन से भी हरित राजस्थान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पीआईबी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से यह भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रूपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रूपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी पत्र का भी खंडन किया है। ब्यूरो ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने, किसी भी प्रकार का पैसा स्थानांतरित नहीं करने और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चलने वाली ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं ली गई।
2: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूबने से आज 3 सगे भाई बहनों सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार ये बच्चे जिले के धम्बोला क्षेत्र के बड़े गांव के रहने वाले थे और एनिकट में सुबह नहाने गए थे। इस दौरान अधिक गहराई में जाने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 2 बच्चों को आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। हादसा स्थल के पास मंदिर होने के कारण बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पाली जिले में वस्त्रों के पैकिंग बैग की कई यूनिट इन दिनों स्थापित हुई है। इनमें अधिकतर ने कुटीर

0: व्यक्तियों के तौर पर पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में 20,000 से अधिक महिलाएं घरों पर ही पैकिंग बैग तैयार कर वस्त्र निर्माता इकाइयों को भेज रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
1: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: सरहदी जिले श्रीगंगानगर में महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता देने और भेदभाव तथा उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आज सेमिनार आयोजित की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई न्यायकर्मी मौजूद रहे। सेमिनार में न्यायिक कार्यों के दौरान और फैसलों में महिला सम्मान भाषा के उपयोग और कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीती 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं फलौदी और जैसलमेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश जिलों में बरसात की गतिविधियां थमने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। वहीं जैसलमेर में आज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर मानसूनी बादल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बरसात की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कोटा का 5वां दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान PhD के 2 शोधार्थियों सहित 203 विद्यार्थियों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाले बने। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर वन विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराने की अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉटेज वार्ड का भूमि पूजन किया और करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित PG हॉस्टल्स का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आम सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का हाईवे है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 75 से 80% काम

पूरा हो गया है, शेष काम भी तेजी से प्रगति पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और भारत माला जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कोटा जिले को प्रमाण पत्र और 9 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोटा बारा झालावाड़ न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की पहली त्रैमासिक वर्कशॉप कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का उद्घाटन किया। श्री भाटी ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जजों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को

0: कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कोटा जिले को प्रमाण पत्र और 9 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोटा बारा झालावाड़ न्यायिक क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की पहली त्रैमासिक वर्कशॉप कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का उद्घाटन किया। श्री भाटी ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जजों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने को भी कहा। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला परिषद सभागार कोटा में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जन प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा विधिक स्पष्टता जैसे विषय पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव सियाम ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, JVVNL और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश प्रदान किए। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जन सेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण का ने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री कानून व्यवस्था ने बत्ती सरल, साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावन का नी बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलों ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नु, उमस भरी गर्मी रो असर आथुणी और सर्दी हल्का माए दिन रो तापमान बढ़ियो। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो है कि जनसेवा में समर्पित अहलकार और कार्मिक सुशासन रो मूल आधार है। वणा कयो कि जन कल्याणकारी योजनावां और नीतियां ने संवेदनशीलता, साफ गोई और भगत सर धरातल माथे उतारण हुए सुशासन स्थापित होवे है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों का न्यू व्यास सम्मान जलसा में बोल रहा है। श्री शर्मा कयो के शासन सचिवालय प्रदेश री 8 करोड़ जनता री आशावां और अपेक्षावां रो केंद्र है और हर कार्मिक गुड गवर्नेंस री धुरी और विकसित राजस्थान 2047 रो महत्व सारथी है। मुख्यमंत्री कयो के वारी सरकार कर्मचारी कल्याण का नी ऐतिहासिक कदम उठाया है और कर्मचारियों रा हित में प्रतिबद्धता रे साथे काम करिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो है कि केंद्र सरकार देश रा न्याय बंदोबस्त ने बत्ती सरल, साफ गोई, तकनीक पूर्ण और नागरिक केंद्रित बनावन सारू बरोबर काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नुआ अदालत परिसर टावर ऑफ जस्टिस रा उद्घाटन मौके वणा कयो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायकारी संवैधानिक जिम्मेदारियों में न्याय री मूल भावना साकार होवे है और राष्ट्र प्रगति रा पथ माथे आगे बढ़े है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

0: जलसामाए सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा और पंजाबरी अदालता रा न्यायाधीश और न्यायिक एहलकार मौजूद रिया। जोधपुर हवाई डारा नुआ टर्मिनल आज बरोबर हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत यात्रियों ने टिकट और स्वागत किट देर वारो स्वागत करियो। इस दौरान बेंगलुरु पहली फ्लाइट रा यात्रियों रोई रीत मुजब राजस्थानी लोक संस्कृति रे साथ स्वागत करीजियो। मीडिया साथ बतलमाए श्री शेखावत कहो कि नुआ टर्मिनल रे शुरू होवन लाडला 12 साल चादरिया इंतजार आज पूरा भी हो। वना कहो कि अठेवों नियमित विमान सेवाओं रो संचालन वेणु आखा मारवाड़ सारू ऐतिहासिक कामयाबी है।
1: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: ध्यान जोगे के जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने करियो हो। 480 करोड़ रुपया की लागत 37 एकड़ में बनया ई टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश दरोजा है और यात्रियों ने सीधा हवाई जहाज ताई पुगावन सारू कई आधुनिक सुविधाएं विकसित करी जी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो है कि जलवायु बदलाव घनी चिंता रो संकेत है। इस संकट निपटन सारू केंद्र सरकार कई पहल करी है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में बोलता श्री चौहान कहो कि आखी दुनिया जलवायु बदलाव और धरती रो तापमान बढ़ने ले चिंता में है। वना कहो कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा बूता में महत्व बढ़वार भी है। श्री चौहान एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ सरी की पहलारो जिक्र करता कहो के भारत साल 2070 ताई शून्य कार्बन उत्सर्जन रो लगस तय करियो है।
2: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: मानसून रे आवन रे साथ ही प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान रे तहत कई जागरूकता कार्यक्रम रखा जावे। एक कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज कोटा में विया वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करी। ई मौके वना पौधा लगार लोगों हरित राजस्थान सारू सक्रिय भागीदारी निभावन री अर्ज करी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही उन फर्जी तस्वीरों खंडन करियो है जिनमें दावो करीजो है कि इथेनॉल मिला पेट्रोल वाहन रा ईंधन टैंक में समस्या वह सके है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई ई दावा ने झूठो बतावता कहो है कि तेल विपणन कंपनियां कानी सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो रा तहत मानका मुजब है। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय रा हवालाओं भरोसा दियो है कि भारत में सप्लाई किया जाने वाला इथेनॉल मिला पेट्रोल में ऊंची गुणवत्ता मानकों का पालन करीजो है और उपभोक्ताओं ने मुहैया कराया जाने पहला इनरो गहराई रे साथ परीक्षण करियो जावे है। पीआईबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत 350 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करण माथे 5 लाख रुपया रो कर्ज मंजूर होने रो दावो करण वालो एक फर्जी कागज बतायो है। पीआईबी लोगों इन तरह रा फर्जी संदेशों सावचेत रहवान और किनी तरह रा रुपया नी भेजन और आप री खुद री बैंक री जानकारी साझा नी करन री अर्ज करी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानियों आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चालन वाली आ भर्ती परीक्षा कुल 9651 औदा सारू वह रही है। इस सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1232 परीक्षा केंद्र बनाई गया है। आज पहले दिन

0: सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा मां लीरी जी।
1: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूब जावणु आज तीन सगा भाई बहना समेत चार टाबना री मौत वेगी। पुलिस बतायो के हासारा शिकार ए टाबर जिलारा धंबोला हलकारा बड़ी गांवरा रहवासी हा और एनिकट में सवारा नावण गया हा। ई दौरान घनी गहराई में जावणु ओ हादसो भी हो। हासारे दौरान दो टाबरा ने आरे सारे रा लोगा भगत रहता बचा लिया। पाली जिला में कपड़ा रा पैकिंग बैगरी के यूनिट आदिना थापित भी है। इनमें घनकरा कुटीर उद्योग रा तौर माते पिछाण बनाई है। मारा खबर न्यूज बतायो के जिला में 20,000 बत्ती महिला मा घरा माती पैकिंग बैग तैयार करने कपड़ा बनावन वाली इकाया ने भेज रही है और आत्मनिर्भरता कानी आगे बढ़ रही है।
2: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है। बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़ानु गर्मी रो असर एक कर फिरू दिखन लाग्यो है। सरदी और आथोणी जिला में दिन रो तापमान बढ़न लाग्यो है। श्री गंगानगर में लाडला 24 घंटा रे दौरान बत्ती रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करीजो। वठे फड़ोदी और जैसलमेर में दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आर सारे रिकॉर्ड भी हो। घणकरा जिला में बिरखारी गतिविधियां थम जावणु कास्तकारा चेहरा माथे उदासी देखी जावे। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चालनु जिंदगी माथे असर पड़ियो। ई बीचे मौसम महकमो कयो है के सैटेलाइट इमेज में राजस्थान रे ऊपर मानसूनी बादल अजे नजर नहीं आ रिया है। महकमा मुजब आवता 3-4 दिन बिरखारी गतिविधियां में कमी बनी रहण री आस है। सरदी जिला रा श्री गंगानगर माए महिलावां ने काम री ठोड़ बरोबरी देवण और भेदभाव उत्पीड़न माथे रोकथाम सारू आज सेमिनार भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार कार्यक्रम माए शिरकत करी। ई दौरान कई न्यायिक कर्मी मौजूद रिया। सेमिनार माए न्यायिक कामा रे दौरान और फैसला माए महिला सम्मान भाषा काम माए लेवण और काम री ठोड़ महिलावां रा हक री जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिलो आज आपरो 32 थापना दिवस मनावे। 3 दिन रा उत्सव रा आखिरी दिन आज भटनी दुर्ग माए पूजा अर्चना रन फॉर हनुमानगढ़ भी हो। ई मौके न्यारी न्यारी होना भी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान रहते पौधाई रोपी जा। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसेवा माय समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण काने महताऊ कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री न्याय व्यवस्था ने बत्ती सरल साफगोई और नागरिक केंद्रित बनावन कानी बरोबर काम कर रही है। सरकार इथेनॉल मिलिया पेट्रोल ईंधन टैंक माय समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है। और प्रदेश माए मानसून रे धीमो पड़ानु उमस भरी गर्मी रो असर आथुनी और सरदी हल्का माए दिन रो तापमान बढ़ियो। नई साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

0: और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
0: तू नई साड़ी ली है?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले

0: पैसों को बढ़ते दे। बढ़िया, जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत रोग कार्यक्रम सुन रहा सगले ग्रामीण भाई ने और किसान भाई ने सत्यनारायण शर्मा और
1: रामस्वरूप बिस्मोई राम मोखला मोखला राम राम
0: राम राम रामस्वरूप भाई और अपना किसान जी का है चौकी तरह खेता में लागोड़ा है और अबार अभियान ने बिना मतलब री बिना काम री अतयू कोई लेन देन को नहीं बे तो कह कोई काम ही बात है तो कर लो नहीं तो माने खेत जार काम कर दो।
1: देखो खेत तो दिन गया कई निंदान करे और कई मैं न उड़ी के खेत हलो कर हुड़ कई जे करना लारे रह गया तो बाढ़ कांटो ठीक करे अब कन जाके मारकन में कम हुए है और बिया लागे की कठी तो बिरखा चौकी उड़ी लोग आड़ो त्यो कर लियो बाजरो बीज गयो कई जेठ मीर अब निंदान करे कई मोट ग्वार तिल और उड़ी के है कि भाई मैं वर्षी तो बीजा ला
0: बिल्कुल सही बात है।
1: किसान मेरी पहचान आई है कि भाई वो भगत माथे आप हुड़ कर ले अलोतियों कर खेती कर ले भगत माथे खरपतवार निवारण खातर निदान कर ले
0: भाई सही बात कही कि भगत सरो जी का भगत रे सागा जी का चले नी वे तरक्की करे उन्नति करे और आगे बढ़े और भगत जी को है नी अब परंपरागत चीजों कही है कि आधुनिक तकनीक रे सागा
1: की लाठी पहचान ना रहे
0: और आपा भी कही है कि अब कागज पन्नाऊ छोड़ आपा मोबाइल में आ गया डिजिटल हो गया इंटरनेट प्रयोग करने लग गया तो अपनी सरकार भी किसान ने डिजिटल रूप से जोड़वा सारू फार्मर रजिस्ट्री योजना चालू करी है और योजना जो को मोटा मोटी उद्देश्य है वो ये है कि हर किसान री सही पहचान जी की है वह तैयार रहे और सरकारी जितनी भी योजनाएं आवे बिहारो सीधो लाभ जिका पात्र और योग्य किसान है बिहार तई पहुंचे
1: यानी एक आईडी मिठा पड़ जे बैठे किसान हो
0: हाँ
1: खाली जमीन भर नाम होनी कोनी वे हाँ। बा फार्मर आईडी बनानी पड़ी जकी हर एक योजना रो लाभ लेवन खातर
0: हाँ कई योजना ऐसी है जकी छोटी जोतारा सीमांत किसान है और भी रखने कही है के जिका कई किसानी सा जिका घनी सारी 200-400 बीघा भी जमीन जिका हो छोटी जी के फायदा ले पर होया है कि जिका पात्र किसान है वंचित रह जाए
1: वंचित
0: तो उद्देश्य वही है कि भाई घणो घणा जिका पात्र किसान है बिना इन चीज रो फायदो मिले और इन सारू कही है कि किसान रो आधार कार्ड जन आधार कार्ड जमा बंदरी खसरा खतौनी बैंक री पासबुक और मोबाइल नंबर जिका है बे जरूरी जानकारी आपने देनी पड़े
1: हाँ जो के वो मोबाइल जो को थारे आधार लिंक है रजिस्टर्ड है वो बन जाने ओटीपी आई
0: हाँ
1: और आप बनाई नहीं है तो भाई चूके नार बना लिया क्योंकि इन रूम अगला फायदा अगला मिलना है
0: और ये पंजीकरण सर अपन नजदीकी जो ई मित्र केंद्र है पटवारी जी है या भारत सरकार द्वारा जिसका अधिकृत माध्यम है बैठा करा सका और रजिस्टर रजिस्ट्रेशन जो कहनी हो पूरा हो जाए तो किसान डिजिटल पहचान जी के बा तैयार हो जाया करे और जहां थे बात करी कि भाई भगतरी जी की यानी बा कीमत है अलग अलग दस्तावेज अलग अलग योजना सर जमा करना पड़े तो आ एक बार बन जानी तो एक ही जगह अपन दस्तावेज जी का है पहचान जी की चीजें पड़ी रहे और सगली जितनी भी योजना है चाहे वह किसान सम्मान निधि योजना हो चाहे फसल बीमा योजना हो चाहे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद रही योजना हो कृषि ऋण हो या खाद बीज वितरण या आपदा राहत प्रबंधन सारू जी की अपने लाभ मिले हैं तो ऐ सब चीजें कही हैं यार फायदो अपा ये चीजें अपने जानकारी दी अपन देवड़ी वेर बनाई डी वेर रजिस्ट्री पहचान तो ले सका।
1: अब मेरे तो सत्यनारायण भाई एक बात हूँ आई है कि नारी नारी आईडिया थे बनाओ बने कई और बोले कि इन खातर ओ कागज और कणी के आ आई डी बनाओ कणी आ आई डी बनाओ पर किसान होने खातर आ फार्मर जकी रजिस्ट्री योजना है इरो फायदो अपन

0: जरूर ले और जो को राष्ट्रीय ग्रुप में किसान है उन्हें खाई लेके तो किसान बढ़िया बैठा है और किसान है ही कोनी तो ये फायदो पात्र किसान तक पहुंचा ये खातर जरूरी है
1: तो जरूरी है सा फार्मर रजिस्ट्री अपन जी की रजिस्ट्र पंजीकरण करना है ताकि आगे आने वाले बगत में कोई भी योजना आवे केंद्र राज्य सरकारी तो भी कृषि योजना का पूरा लाभ जो अपने मिल सके तो किसान हित सारू राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री योजना जी के एक महत्वपूर्ण कदम है और योजना जहाँ बात करी अपने लाभ जी को वो लेना चाहिए और लाभ री बात अपन और करा कार्यक्रम थोड़ा अपना आगे बढ़ावा मीठो सो एक लोकगीत जी को है सीमा मिश्रा और बया साथियों गायड़ो सुना सा

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

0: देखो बीजोपचार बात कर रहे तो मुख्य रूप तीन प्रकार रह करे रासायनिक बीजोपचार जैविक बीजोपचार और पोषक तत्व बीजोपचार रासायनिक उपचार मैंने फफूंदनाशी या कीटनाशी दवा उपयोग करया करें आप जबकि जैविक उपचार में ट्राइकोडर्मा राइजोबियम एजेटो बैक्टर पीएसवी ए लाभ करी देखे सूक्ष्म जीव है बिया उपयोग में आप लिया
1: सका और किसान भाई इन चीज ने ना निगे रखे
0: विशेष रूप जो दलहनी फसल है बिया राइजोबियम रो उपचार आप करया करा जिके में कहें जड़ा में गांठ बनावे और अवारो नाइट्रोजन जो का जमीन में
1: रासायनिक
0: खाद री जरूरत भी कम पड़िया करे
1: ठीक बात कही आप
0: तो ये चीजा रो ध्यान रख ला और अपने आजकल कृषि विभाग है कृषि विज्ञान केंद्र है और विश्वविद्यालय जट है किसान है बीजोपचार महत्व में जानकारी भी देवे है इनमें कई योजना अंतर्गत उपचारित बीज का उपलब्धि करावे है तो किसान भाई ने चाहिए कि बुआई से पहला बीजोपचार जरूर करावे ताकि कम लागत में घणो उत्पादन युक्त मिले खेती जिकी
1: है। अब बात बैठे आए रिठूंगी पहले अपन बात कार्यक्रम में शुरुआत में फार्मर आईडी री करी जो को सरकार की नजर में किसान है तो मां सगला रो रिकॉर्ड अपन कृषि विभाग कने अपने पटवारी जी कने और अपने ग्राम पंचायत में है तो लार लगना आप रे गांव में देखियो आप कि बीज बांटन में लोग आया बांटन का मतलब जो की लागत रेट ही बात दी पर बीज वो उपचारित हो बीजोपचार भी रो करूड़ो हो और नंबर आयो जका जका किसान आपरी आईडी बनाउड़ी ही आईडी बनाउड़ी हुई जने पैसा जका मिले किसान ने कई अड्डी कह के मान तो भाई 2,000 रुपया साल में तीन बार मिले मिलिया को नहीं तो मिले कठो थे कोई कागजी हम कमी राखी है तो जरूरत आ है कि आप इन चीज रो फायदो ले और फायदो बाद सत्यनारायण भाई मारकना तो पड़ी है थे पैर के बताई रहा मार्गन देख हुआ फूट रो गीतड़ ले थे को बाजे मत बजा
0: बजाओ सा
1: ऐसा वैन के वहां बजा लो

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन। यह

0: यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: थे कहीं क्या के लगाऊं कहीं लगाऊं।
1: हाँ मैं यहाँ कह रही हूँ मैंने अमरुद कड़ा भावे और बाजार लावा पैसा लागे। अब अमरुद घरे उन लाग गया उगन लाग गया तो कहो कहीं तो मारे कोई भाईडो अब कियो के अमरुद तो अपने घरे लार बाखड़ में भी लाग सके।
0: देखो सत्यनंद भाई बात आ है कि अमरुद ही क्यों आम लगा सको अनार लगा सको बील पत्र लगा सको दूजा नींबू है बोरिया है बोरिया में भी वैसे मोटा मोटा बोरिया ए लगाना चाहो नहीं थो। एक तो अपने अठे लंठी संस्था है राष्ट्रीय बागवानी जको संस्थान है बीरो एक मोटो कार्यक्रम चल रहा है जको किसान टेम टेम माथे जका फलदार पेड़ है दो लगाओ चार लगाओ शुरुआत देखो एक दो वह पछाव जिज्ञा बत्ती है तो नहीं बची है जका फल बाजार में बेचे हो
1: तो भाई
0: पड़ोसन जमाई सको
1: बात सही कही थे की परंपरागत खेती सके फसलां भी अपन ले सका
0: नहीं आप फसल ले किनारे किनारे खेतरी मेड़ माथे फलदार पेड़ लगा सको भीतरे कने कने जिज्ञा है बाखड़ में थोड़ी जिज्ञा है तो नींबू रो पेड़ लगा दो आम घने आपने अठा हुआ है आंवड़ा घने हुए है आंवड़ा तो चोखा चोखा जगह पौधा है लोग ट्रेनिंग लेर भगत सारू बीज रोपो और मारी सार संभाल करो उन्हें कि आज रोपे और काल बिंग हम ही जाके आज में लाग गया कहीं अमरूद अमरूद तो भाई टाइम लाग गई
1: टाइम दे वहाँ सार संभाल भी कर हाँ जब बताओ तो दवाई पानी भी अपन
0: इन सारू अपने करनो कहीं है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जुड़ना है
1: और कई तरह की योजना भी यहाँ चला हुआ है कोई अनुदान योजना भी देवे है तो बीरो फायदो भी आप ले सका और सब्जी रिजी फसल है औषधीय पौधा रिजी की फसल है वे तो अपन ले वही बीरे सागे बागवानी रिजी का काम है वो आप कर सका और आज पानी रो कहीं है कि अपन देखो घनी जरूरत है संरक्षण भी जरूरत है इन बात ने ध्यान रखता सरकार कहीं है कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं इन्हें बढ़ाने सारू अपनाने सारू कहीं अपन अनुदान दिया करें
0: और तो, सरकार कहीं अब एक तकड़ो तो ट्रेड चाल रही है जिका भी किसान है नी वे पोली हाउस माथे जोर रखे सरकार भी इन माथे खूब अनुदान देवे
1: मौसम रे जिको उतार चढ़ाव है
0: बीहू बचने रो एक हाथरो तरीको हाँ, ही है
1: और आजकल जिकी ये मैंने कही है कि कठेरी फसल अपन अठे भी उगा सका बीस तरह रो भी ने वातावरण दे पा रहा पांच महीने तो नवी नवी तकनीक है जिका मौसम रे विपरीत असर से भी फसल ने बचावे और साल भर गुणवत्ता युक्त उत्पादन जो है ले सका। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जो नर्सरी विकास है गुणवत्ता युक्त पौध उत्पादन है पुराना बगीचा है बिहार जीर्णोद्वार है बिहार सार संभाल है जैविक खेती है वर्मी कंपोस्ट इकाई लगा काम कर सके मधुमक्खी पालन रो है ग्रेडिंग भंडारा

0: करण और कटाई बाद में जो प्रबंधन जो काम है या सगली गतिविधियां जी की नहीं इनमें सम्मिलित है। और ये सुविधा सारू किसान ने उत्पादन लेर बाजार तक हर चरण में लाभ मिलिया करें।
1: और करना अपन वो है कि अपन इन योजनाओं और फायदो उठाने वास्ते है जबकि राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी विभाग है इच्छुक जो किसान है आप नजदीकी बागवानी विभाग कृषि अनुसंधान केंद्रों कृषि विज्ञान केंद्रों या अपने ठहर जो ई मित्र है बीमा थे जा रहा जानकारी ले सके। आप जो चाहो कि भाई मेरे पुराना बाग और कि नष्ट हो गयो तो पाछो सावड़ करना चाहवा तो अपन वही काम करना है किसान होने रो प्रमाण और आधार कार्ड है जन आधार है जमाबंदी है मोबाइल नंबर है बेसब दे रहा आपने एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन खातर पंजीकृत होना है। अब बाग आ है कि बाग तो कहीं है बात आ है कि करनो कहीं है
0: गीत सुनना है
1: गीत सुनना है सुनो
0: सुनाओ सर।

0: शहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: तो कैलाश भार्गव गाड़ी हर जैसा के भगत हो रही है जाऊं ता एक आप और संदेश देना किसान भाई ने के पशुओं रो बीरखर भगत ध्यान रखे जरूरी तो, जी का टीका है
1: लगाए रखे टीका करने वालों कार्ड हमाल रखे जन ठा पड़ जी किसे डांगरे लगोड़ कौन अब तो चला सीख दे राम सर बिस्नोई यार
0: सत्यनारायण शर्मा
1: मोकला मोकला राम राम
2: ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए लक्की अली का गाया हुआ ये गीत।

अमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए लक्की अली का गाया हुआ ये गीत।

मीरा रे की गाई हुई थी ये गज़ल जो अभी आपने सुनी, और अब सुनिए शांति वर्मा की गाई हुई ये गज़ल।

प्रतिभा वरोडकर की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम था बेशरम, स्वर था श्रेया घोषाल और सोनू निगम का। अगला गीत सुनिए, मर्डर टू फिल्म से है, क्षितिज तर्रे, सईम भट्ट और मिथुन के स्वर में।

फिल्म का नाम है अफलातून, स्वर है रेमो फर्नांडीज और साथियों का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 बजे हैं।

0: अभय सिंह गहलोत और साथियों के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके उपरांत 9 बजे अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए

15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो चि मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से।

0: यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात तो सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फोकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हुंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ

0: बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। यह अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओवरडोस में खेले जा रहे एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडिनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन ही बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की समस्या

के दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे है। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेडिंगवेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मोह चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म का नाम है देशवासी, स्वर है नितिन मुकेश और अनुराधा।

0: हरिहरन की गाय फिल्म 10 के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे रविवासी अखिल भारतीय संगीत
1: प्रस्तुत है कुमार मल्डोर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मल्डोर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मल्डोर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मल्डोर ख्याल टूरी हिंदी भजन मराठी अभंग कन्नड़ दास साहित्य कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइकल बाय श्री कुमार मल्डोर अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मल्डोर stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros.

0: Multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thuri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya, and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कन्नौर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मालडोर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग चायमत से कर रहे हैं। विलंबित जुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरे मालनिया, द्रुत तीन ताल तरना।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम He is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kannur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremuth. Shri Kumar Maldoor will begin his vocal recital with Raag Chayanut. Vilambit Jhumra Inayat Ho, Drit Teen Taal Eri Maliniya, followed by Tarana in Drit.

0: मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सकी मना लागिन द्रुत एकताल विनती करत है।
1: ए जस्ट हर्ड राग छायानत। श्री कुमार मल्डोर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सखी मना लागिन द्रुत एकताल विनती करत है।

0: नागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मल्डूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सतलिंगप्पा देसाई कन्नौर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was राग बागेश्री। With that, we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर

चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।